0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Samsung ki mala pe sim room hai.
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, मतलब कोई भी ब्रांड हो, हट्टा खट्टा तो है ना? जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, इसने बहुत कुछ खाया है। ये हाथों की घड़ियां खा गया, ये लेटर्स, लव लेटर्स खा गया, इसने रेडियो को खा लिया, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, कैमरे चबा गया, टॉर्च को खा गया, ये मोबाइल किताबें खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं, पड़ोस की दोस्ती, मेल मिलाप सब खा गया। अब समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया, ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते खा रहा है, ये लोगों की हेल्थ खा रहा है और उन्हें रोगी बना रहा है। ये मोबाइल यूं ही हट्टा खट्टा नहीं हुआ है, हमने इसे बहुत कुछ खिलाया पिलाया है। तो बॉस क्या कहते हैं, ठीक तो है ना आपका मोबाइल? हाँ, तो ऐसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या, सोचिए। आइए फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी।

सो वेलकम बैक. इट हैपेंस. एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. यू नो, आज सुबह मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और जब उसे कप में निकाला तो वो गिर गई. मुझे लगा कि शायद भाई मैंने मन से नहीं बनाई होगी. मैंने दोबारा कॉफी बनाई, फिर कप में निकाली और वो फिर गिर गई. शायद मेरी कॉफी की रेसिपी गलत है. जब मैंने कई बार इसे गिरते देखा तो यही सोचा. फिर बाद में दिमाग चला कि भाई रेसिपी गलत नहीं है, शायद उस कप की कैपेसिटी नहीं है कि वो उतनी कॉफ़ी को हैंडल कर पाए. ज़्यादा कॉफ़ी है और शायद इसलिए वो गिर रही है. ठीक इसी तरह से तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है. हम कुछ लोगों को इतना एक्स्ट्रा प्यार, इतनी एक्स्ट्रा केयर दे देते हैं जितनी संभालने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है. वो उसे हैंडल नहीं कर पाते और फिर हमें लगता है कि शायद हमारी ओर से कोई कमी रह गई, हमारी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम थी. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो उतनी ही चीज़ों को, उतने ही प्यार, उतने ही एफर्ट्स, उतनी ही केयर को, उतनी ही उनके लिए की गई परवाह को वो हैंडल कर सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है. सो कैपेसिटी से ज़्यादा मत दीजिए वरना चीज़ें बाहर गिरेंगी. स्टे ट्यून्ड सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी. आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

नो, कई बार हम सारी चीजें तो करते हैं लेकिन अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करते। खासकर लेडीज की आदत है कि वो घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, हर चीज का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ख्याल रखेंगी, लेकिन अपनी हेल्थ की जब बारी आती है तो वो एकदम लापरवाह हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना घर नहीं चल सकता है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता, सबसे बड़ी गलत फहमी उनकी है। हमें मानती हूँ कि चीजें मिसमैनेज होती हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बीमार पड़ जाती हैं तब आपके हस्बैंड, आपके बच्चे थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते होंगे, नहीं डालते तो कम से कम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, मीट रख लेते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भूखे सो जाते हैं या फिर उनका काम ना चले, है ना। लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है, खुद की हेल्थ पर फोकस कीजिए, खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं, फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

कई बार हम चीजों को बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम इस पर ध्यान नहीं देते। मैंने जो चीज रियलाइज की है, ये ओवरथिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली लेडीज के साथ या उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो एक घर में रहते हैं, मतलब एक रूम में, एक घर में, एक एरिया में पर्टिकुलर वो रहती हैं, बाहर की दुनिया से ज्यादा राबता नहीं रहता, थोड़ा बाहर निकलेंगी नहीं, वॉक नहीं करेंगे आप, घूमेंगे नहीं, या वो मेल्स भी जो वर्क फ्रॉम होम पर हो जाते हैं और फिर उन्हें बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाहर निकलना, बाहर की दुनिया को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके थ्रू आप अपने आप को फिट रख सकते हैं मेंटली। जब आप एक ही जगह पर रहते हैं तो वही सारी चीजें देख देख कर आपकी ओवरथिंकिंग की आदत पड़ जाती है, आप कुएं के मेंढक जैसे हो जाते हैं जिसे कुछ और नजर ही नहीं आता है। इसलिए प्लीज बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, वॉक पर जाइए, सुबह टाइम नहीं मिलता शाम को निकल जाइए, बट अपने घर से निकल के बाहर की दुनिया को देखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए ठापन। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 107.01।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सो वेलकम बैक। इससे एक और गाने के इस पार सताक्षी है आपके साथ। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो, कई बार ना हम कुछ रिश्तों में, कुछ ऑफिस वर्क में, कुछ प्रोफेशन में, कुछ ग्रुप्स में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं। हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम साइड कर देते हैं और हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस इंसान के साथ, उस ग्रुप के साथ, उस फैमिली के साथ, उस ऑफिस में। कई बार आप एडजस्ट करते हैं लेकिन अपने आप को इतना तोड़ मरोड़ के अगर आप एडजस्ट करते हैं तो कब तक कर पाएंगे? अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपने विशेष को अगर आप ताक पर रख कर अपने आप को पूरी तरह से झुका कर अगर आप एक इंसान के साथ, एक ग्रुप के साथ, एक रिश्ते में आप एडजस्ट हो रहे हैं या आपको प्रमोशन मिल रहा है तो कब तक आप हो जाएंगे एडजस्ट? बट आपका दम घुटने लगेगा और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो प्लीज ख्याल रखिए खुद का, खुद के सपनों का, खुद की ड्रीम्स का। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का एक और सफर जिसमें आप मेरे साथ थे इस मॉर्निंग, और हम और आप मिलकर जिंदगी के कुछ बेहतरीन सपनों को डिस्कस कर रहे थे। सो बस जिंदगी के इन्हीं सपनों के साथ हमारा तालमेल जारी रहेगा कल भी इट हैपेंस में आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में। लेकिन अब ये वक्त है आज के सफर से इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों की ओर बढ़िए और अपनी जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए अच्छी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसर ओवन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा वेला हो चुके है जी। इस वेले दे दौरान असीं गल्लां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा। पर अज मैं कल्ली नहीं हैगी, अज थोड़े नाल गल्लां करन दे लई मतलब साडे नाल गल्लां करन दे लई खास मेहमान ने। तां उह मेहमान अजे हैगे ने जिन्हां दी फिल्म आ रही है, ते जदों जदों कोई फिल्म लैके आए ने या कोई गाणा लैके आए ने ते बहुत ही बाकमाल हुंदा, बहुत ही ज्यादा शानदार। इंज करो तुसी जुड़ना शुरू कर दो, मैं हुणी दो मिंट दे विच लैके आउनी आ। साडे नाल अज मौजूद ने तरसेम जसड़, सारे रल के करदे उन्हां दा स्वागत।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है। चलिए तो सुनो, मूवीज की गल की, कॉन्टेंट की गल की, एज अ एक्टर थोड़ी गल करिए ना जी, तो सेम तो एज अ एक्टर थोनू थोड़े अनुसार एक एक्टर दी जिहड़े अलग अलग, क्योंकि अजकल फिल्मां दे जिहड़े दोनों ने बहुत अलग अलग हैगे ने, बहुत कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आने तो बाद तां कंटेंट भी बहुत बदलता जा रहा है ना, तां
1: जी
0: एक कलाकार दे तौर ते एक कलाकार दी सब तो वड्डी जिम्मेवारी थोनू की लगता है की हुंदी है?
1: मैनू लगदा जी, जिन्नी अपनी चेयर वड्डी हुई जांदी है ना जी, उन्नी अपने ते जिम्मेवारी वधी जांदी है। सो एक कलाकार दी भी एक मतलब थोनू लोकां वल्लों मिलिया होया माण हुंदा, थोनू एक चेयर मिल जांदी है वी तुसी उहनां दे एज ए रिप्रेजेंटेटिव तुसी एक्ट करदे हो, है ना जी। सो असी साडे वल्लों तां ही इह हुण जिवें इह फिल्म भी है जी, इहदे विच वी जां कंटेंट जिन्ना भी चूज़ करदे आ जी, ट्राई हुंदी आ उहनूं बड़ा वाइजली चूज़ करिए, क्योंकि जिवें तुसी ओटीटी दी गल करिए तां ओटीटी ते नो फिल्टर आ जी। हुण अजकल तां मतलब इह गल हुण मान लो इदां दी हो गई आ कि एक घर दे विच सारा परिवार इकट्ठे बैठ के जे एक चीज़ लाउणी होवे तां थोनू उंगलां ते गिण के फिल्मां लभ सकदियां, भी सिर्फ इन्नियां के लग सकदियां ने, इह तों ज़्यादा कंटेंट तुसी इकट्ठे बैठ के देख ही नहीं सकदे।
0: बिल्कुल
1: सो
0: सही,
1: सेम
0: बिल्कुल
1: सेम
0: सही।
1: चीज हुण सिनेमे दे विच आ गई जी। सिनेमे दे विच वी हुण मतलब इदां ही चल पिया काम, ज्यादातर कंटेंट हैगा जिहदे विच मतलब जे आपां पंजाबी दी गल करिए तां पंजाबी दा मतलब मैनूं लगदा पंजाबी फिल्म दा मतलब हुंदा जी अपना कल्चर, ठीक है जी। हुण आपां अज बाहर बैठे
0: बिल्कुल
1: वी इह पंजाबी फिल्म नूं देखण जांदे आ, उहनूं प्यार करदे आ, तां उह पंजाबी होण दे नाते करदे आ वी असीं पंजाबी आ, साडी साडी भाषा दी साडी लैंग्वेज दी मूवी आई आ, असीं उहनूं सपोर्ट करनी आ, असीं यार देखदे आ, साडा कल्चर दिखूगा, बच्चिआं नूं दिखावांगे ते इहनां दा वी थोड़ी अटैचमेंट जुड़ी
0: हाँ
1: रहूगी रूट्स नाल, ठीक है, इहनां नूं कल्चर दिखूगा। सो अपना मैनूं लगदा वी इह चीज़ दा अपना टारगेट हुंदा। सो जे जिहड़ी मूवी उह टारगेट पूरा नहीं करदी तां आपां फिर डिसअपॉइंट हुंदे आ, यार असीं पंजाबी फिल्म क्यों देखणी सी, असीं कोई होर देख लैंदे, असीं होर कल्चर तां असीं हॉलीवुड 'च भी देख सकदे आ। सो मैनूं लगदा वी उह मोर लाइक पंजाबी फिल्म दा मतलब हैगा जी रियलिज्म दे नेड़े होवे, चाहे उह थोनू हसाउंदी होवे, चाहे उह थोनू कोई ड्रामा होवे, चाहे उह एक्शन होवे, बट उह रियलिज्म दे नेड़े होवे,
0: बिल्कुल
1: तुसीं ना रिलेट कर सको, थोनू उहदे विच घट्टो घट्ट पंजाबी कल्चर दी खुशबू आउणी जरूरी है जी। सो उह चीज़ असीं हमेशा मेक श्योर करदे हाँ जी वी जिहड़ी फिल्म होवे तां उहदे विचों उह मिट्टी दी खुशबू ते अपना कल्चर दी खुशबू उह जरूरी है जी आउणी।
0: बिल्कुल। अजकल ना जेड़ी साड़ी एक इंडस्ट्री है

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: डिजिसेल, बेटर टुगेदर।
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: सारे एक्टर्स ने जिहड़े पंजाबी वाले मैक्सिमम बॉलीवुड वाल जा रहे हैं ने, तो बहुत ही सोहना शानदार काम कर रहे हैं। बेशक एम विर्क होवे, हार्डी संधू होवे, जैसी गिल होवे, सारे। जे तुसी बॉलीवुड दे विच ये फिल्म बनाउणी हुंदी दस्तार, तां की इसका असर आ जिहड़ा वो कुछ वक्खरा हुंदा या सेम रहिंदा?
1: देखो जी, गल हैगी आ फिल्म दी रिलीज ते उहदे मैसेज दी, है ना जी। मैनू लगदा जिहड़ा मैसेज आ जी, उह वधिया मेकिंग नाल ते वधिया लोकां च कन्वे होणा चाहीदा। नो डाउट, जिन्ना थोड़ी स्टेज ते
0: बिल्कुल।
1: प्लेटफॉर्म वड्डा होई जांदा, उन्ना थोड़ा इंपैक्ट, ते जिवें आपां लाइट जिन्नी उच्ची करके ला दिंदे आ, उन्ना उहदी रोशनी उह दूर तक जाण लग जांदी है जी। सो इट्स सेम लाइक दैट। जे आपां पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दी गल करदे, मैं बार-बार हमेशा एक गल कहिंदा हुंना जी, भी आपां ग्रो करिए। जे साउथ वाले अपने सिनेमे नूं इत्थे तक ले जा सकते हैं तां पंजाबी सिनेमा भी जा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अच्छा, कदे जिंदगी दे विच इस दस्तार तो थोड़ा हट के थोड़ी पर्सनल लाइफ से जाइए, जे तरफ से कदे जिंदगी दे विच वो जा होया है कि तुसे करियर दा कोई फैसला लिया होवे जिस ते लोकां ने पहला सवाल चुके होण ते अज ओही सब तो वड्डी ताकत बनया होवे थोड़ा?
1: कंटेंट सिलेक्शन जी, मूवीज दा कंटेंट
0: हाँ,
1: सिलेक्शन ते गाणियां दा कंटेंट सिलेक्शन, यही सवाल दा
0: पर
1: कारण
0: आई
1: सीगे जी,
0: थिंक थोड़ा
1: अज
0: कंटेंट
1: यही
0: सिलेक्शन है ना
1: एप्रिसिएशन दा
0: थोड़ा
1: कारण।
0: तो, हाँ, पर मैं थोनू मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी जेड़ा कंटेंट सिलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। बेशक थोड़े पंजाबी सॉन्ग सोने या फिल्मा होन आज भी हर जुबान पे है, क्योंकि थोड़े
1: जी
0: सॉन्ग्स भी बहुत सोने
1: नहीं,
0: नजर आते, थोड़े
1: थैंक यू
0: फिल्मा भी। अच्छा रत्न सिंह, एक
1: थैंक यू।
0: जे थोड़े को सिर्फ ना सिर्फ 60 सेकंड होन, मान लो कि 60 सेकंड है थोड़े को, तो तू पूरी दुनिया सिर्फ थोनू ही सुन रही है, तो
1: मैं
0: तुसे 60 सेकंड दे विच कोई अपने दिल की गल कहनी है तो तुसे की कहोगे?
1: पहला तो जी सारे नु बहुत प्यार दूंगा, मेनू बहुत ब्लेसिंग आ थोड़े प्यार दी, परमात्मा दा शुक्र, थोड़े सब दा शुक्र, ते मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करदा कि मैनू बस प्यार मिलदा रहे, ते मैं उम्मीदा ते पूरा उतरदा रहा, मैनू इन्ना बल मिले जिहड़ी किरत मैं करदा हमेशा
0: बिल्कुल
1: मिलदा रहे।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: काम काट
1: जी। अच्छा छोटा जा, एक रैपिड फायर कर लिया, छोटा जा फिर
0: जी
1: लास्ट क्वेश्चन। अच्छा
0: जी
1: लिगेसी और लग्जरी,
0: लेगेसी
1: स्क्रिप्ट या स्टार्डम?
0: स्क्रिप्ट
1: दिलजीत दोसांझ या एमी विर्क?
0: दोनों जी, दोनों साढ़े पगाने भरा।
1: विलेज लाइफ या सिटी लाइफ?
0: विलेज लाइफ जी।
1: बुक्स या सोशल मीडिया?
0: बुक्स जी
1: एक्टिंग या राइटिंग?
0: बोथ दोनों नहीं छोड़ सकते जी।
1: अच्छा वन पंजाबी आर्टिस्ट से जो थानू लगता है कि अंडररेटेड है?
0: हरमनजीत राइटर दे तौर ते जी, हरमनजीत
1: अच्छा
0: बहुत कमाल दा राइटर आ, पर हजे उन्हों उन्ना नहीं, मतलब कमर्शियल वर्ल्ड दे विच उन्हों उन्ना नहीं जाने जान्दा, पर बेस्ट, वन ऑफ द
1: अच्छा
0: बेस्ट राइटर है आज दे समय दा जी, हरमनजीत।
1: एक चीज जो तुसी पूरी दुनिया नु पूरे लोकां सब नु कहना चाहोगे जो थोड़े बारे अज्यूम करना बंद कर दें, जो थोड़ा तुसी सुनिया होवे अफवाहां अपने बारे कि ये अफवाह, इस बारे सोचना बंद कर दो, कोई एक चीज।
0: वो एक चीज यही है जी भी शायद, मतलब मैं बहुत पता नहीं गुस्से वाला या मतलब भी ये अपने आप लेके बहुत फसी जा होगा, है ना, वो चीज मैनू लगता
1: हाँ
0: भी शायद वो बहुत बड़ा एक भुलेखा सब नू
1: ये हो जाता है, ये चीज सच्चा। देखो जी 20 साल बाद ना लोकतंत्र सिंह जसड़ नो सिर्फ सिर्फ एक गल करके याद रखना ना, ता वो केड़ी होगी?
0: दस्तार जी।
1: ओ वाह वेरी गुड, मतलब इतना शानदार जो दिते ना, इतना मजा आया ना थोड़े नाल गल करके, ते होप बहुत ज्यादा वधिया मूवी होगी, क्योंकि जिम्मे पहला कह सके ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत मजेदार है, हमेशा की तरह जो थोड़िया मूवीज ने वो चंगिया ही लगिया ने, गाने भी ते मूवीज भी ते ए भी चंगी ही लगूगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी सारे।
2: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीख

0: दूं तुम्हें,
1: हाँ,
0: या चुप रहूं,
1: ना
0: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया।
0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश।

0: बच्चों की माला पे सिमरूं मैं।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, ये सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिजाज जो है वो कैसे हैं, तबीयत जो है वो कैसी है, सब कुछ जो है वो पूछना पड़ता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, फिर आपको ये बताना भी चाहिए। यू नो व्हाट, हम हमेशा जो है एक ही चीज़ कहते हैं कि वी आर गुड, वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग फाइन, इवन वेन समटाइम्स वी आर नॉट डूइंग ग्रेट। जब हम नहीं भी इतना अच्छा फील कर रहे होते, तब भी हम ये बोलते हैं। बट यू नो व्हाट, आज मैं आपको यही कहूंगी कि जब भी आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और सामने से कोई आपको पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो आपको वो एक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक है। यू कैन से दैट कि आई एम फीलिंग ओकेश टूडे, मतलब आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। या यू कैन से इट, इट्स नॉट अब नॉर्मल। या वी आर ह्यूमन एंड वी कैन डू इट। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम करते हैं, और वो क्या है। वेल ऑफकोर्स, एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करना, वो रिचुअल जो बहुत ही अच्छे से हमें खूबसूरत फील करवाता है। एंड व्हेन आई से खूबसूरत, मानसिक तौर पर, जी हाँ, मतलब मेंटालिटी को हमारे को खूबसूरत बनाता है, मेंटली हमें खूबसूरत फील कराता है, अच्छा फील कराता है। फिजिकली हम अच्छा फील करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं या डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें मानसिक तौर पर अच्छा फील होता है, मेंटल तौर पर अच्छा फील होता है। तो आइए इसी के साथ सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और प्रोग्राम का सबसे पहला गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि उसे रूप कुमार राठौड़ ने बनाया था। और ये गाना है मौला मेरे जी हाँ, आंखें तेरी कितनी हंसी। जी हाँ, वही गाना है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है। जरा बात कर लेते हैं मौसम की। आपको पता है, ये मौसम के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि मौसम आपको बताता है क्या होने वाला है आज, कल और परसों और अगले 5-6 और दिन, मतलब अगले हफ्ते तक, और भी उससे आगे का भी बता सकता है मौसम। पर प्रिडिक्शन जो है वो इतनी ही कर पाता है, और वो प्रिडिक्ट ही कर पाता है, मतलब पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे पाता वेदर फोरकास्ट भी कि जो हम बोल रहे हैं वो होगा या नहीं होगा एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और अभी की अगर बात की जाए तो 18.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 16.6 डिग्री सेल्सियस के करीब, जो कि ठंडा है और काफी ठंडा है। और इसी के साथ बारिश की सिचुएशन भी यहां पर बनी हुई है। जी हाँ, वैसे तो 20% चांसेस है बारिश के, लेकिन मैं देख पा रही हूँ बीच बीच में बारिश हो रही है, और 14%, 18%, 13%, अगेन वही बात है कि कहीं कहीं पर होगी, कहीं कहीं पर नहीं होगी, कहीं जगह किसी जगह पर बूंदाबांदी होगी, किसी जगह पर बूंदाबांदी भी नहीं होगी। जी हाँ, तो ये तो है दिन के हाल। रात को 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे, जो कि अगेन काफी ठंडा होने वाला है, और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। चलिए, आज की तो बात हो गई है, और इसी के साथ अगर कल और परसों की बात की जाए, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे की बात की जाए, तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम रहने वाला है विद 40% चांसेस ऑफ रेन, और फ्राइडे को 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा विद अगेन 40% चांसेस ऑफ रेन। सो या यही होने वाला है, और अगेन आपको रेडी रहना है। मौसम जो है वो हमने बता दिया है आपको अगले 2 दिन का भी, बारिश जो है वो हो सकती है, और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स

0: ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे। मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं और जो आपने सुना है, मतलब कि आपका जो भी पसंदीदा अजीज गाना है जो आपको बहुत ही पसंद है, उसे आप फरमाइश कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और हम आपके लिए उसे प्ले करेंगे। इनफैक्ट आप किसी को और गाना वही डेडिकेट भी कर सकते हैं, उनको स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। और इसी के साथ ये आप सारी चीजें कर सकते हैं, आपको बस एक फोन अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, एंड कैन वी जस्ट टॉक अबाउट द स्पेन फ्रांस मैच। जी हाँ, आई हैव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि फ्रांस इस रेस से बाहर हो गया है और स्पेन पहुंच गया है वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। आप लोग बोलोगे कि या निविया, दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्पेन जो है वो पावरफुल नहीं था। स्पेन थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट फ्रांस तो मतलब लेजिट क्या खेल रहे थे वो लोग। चाहे फिर वो किलियन एम्बापे हो, फिर चाहे उनकी टीम के और बहुत सारे लोग हो, मतलब फ्रांस की टीम में 5-6 बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स थे, बट स्पेन की टीम बहुत ही ज्यादा यंग है। सो यू नो व्हाट आई मीन, एंड यहां पर स्पेन ने फ्रांस को बाहर कर दिया। किलियन एम्बापे, जिनको लिटरली डिक्टेटर एम्बापे से उनकी एक एनिमी सीरीज भी बन रही थी, जहां पर वो लिटरली डिक्टेट कर रहे थे सबको, फिर चाहे वो मेसी हो, फिर चाहे वो अर्लिंग हॉलैंड हो, किसी को भी, मतलब एवरीवन वाज अफ्रेयर्ड ऑफ हिम, क्योंकि वो खेल ही इतने खतरनाक रहे थे। वेल, गोल्डन बूट्स की रेस में वो अभी भी मेसी के बराबर हैं, और अगेन मेसी जो है वो अब इस गोल्डन बूट की रेस को जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं, उनके पास मौका जरूर है, क्योंकि यहां पर ये वाला मौका जो है वो एटलीस्ट किलियन एम्बापे के लिए यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन मेसी जो है उनकी रेस अभी भी बरकरार है, क्योंकि उनका मैच जो है वो होने वाला है इंग्लैंड के साथ, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड बहुत सालों बाद, बहुत डेकेड्स के बाद फिर से जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो जाए। नाउ वी डोंट नो, बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो पार्शियल इजिप्ट के साथ हुई है, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी कि आई एम अ फैन ऑफ मेसी एंड आई हैव बीन चेयरिंग फॉर अर्जेंटीना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड यू नो दैट टू, हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं यहाँ पर, बट इजिप्ट के साथ जो पार्शियलिटी हुई वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब दैट वॉज समथिंग जो कि क्लियरली गलत किया गया। मतलब वो अर्जेंटीना इज अ गुड टीम, बट वहां पर इजिप्ट जो है वो क्लियरली उसे जीत सकता था, लेकिन वहां पर गलत हुआ। सो आई एम नॉट गोना से कि मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रही हूँ आगे के लिए, बट डेफिनेटली इफ इंग्लैंड विंस और स्पेन विंस, आई वोंट माइंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप क्या सोचते हो और क्या लगता है आपको, ये जो मैच था जिसमें 2-0, मतलब बॉल लगने ही नहीं दी फ्रांस के हाथों में, मतलब कैन यू बिलीव क्या खतरनाक खेले यमील जमाल वगैरह, सब कुछ एकदम खतरनाक। जी हाँ, सुनते हैं एक और गाना और अपने राय जरूर बताइएगा हमें, ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैच और अपकमिंग मैचेस। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Samsung ki mala pe sim room hai.
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर एंड आई थिंक आपने उस वीडियो को अभी तक देख लिया होगा, और इन केस आपने नहीं देखा है लेट मी टेल यू अबाउट दैट। द वीडियो इज अबाउट अ डॉग जो कि अपने घर वालों के घर की रखवाली कर रहा है। जी हाँ, जो उसके ओनर है उसके घर की रखवाली कर रहा है, और वो देखता है कि घर वाले घर पर नहीं है और एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है। एंड द स्टोरी इज ऑफ चाइना। जी हाँ, ये चाइना की कहानी है जहां पर एक घर के बाहर जो डॉगी बैठा हुआ है, जो कि उसी घर का है, और वो देखता है कि एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है और घर वालों ने कॉर्न यानी कि मक्की जो है वो सूखने के लिए जो है वो सन ड्राई करने के लिए जो है वो रखी हुई है, सूखने के लिए रखी हुई है। तो वो देखता है बारिश हो रही है, वो ओनर को नहीं बुलाता, वो पैनिक नहीं करता, और ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो सीसीटीवी कैमरा में जो है वो कैद हो गई। इसी वजह से ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई। वो डॉग जो है वो अपनी ही समझ का इस्तेमाल करता है और जल्दी से कहीं से एक जो वाटरप्रूफिंग वाला जो शीट होती है उसको वो लेकर आता है और उस कॉन के ऊपर डाल देता है चारों तरफ से। जी हाँ, माइंड यू, चारों तरफ से एकदम अप्रोप्रिएटली, एकदम सही से, एकदम मतलब स्टेडिली उसको वो डाल देता है और वो उस कोन को बारिश से बचा लेता है। इमेजिन, आप सोचिए। एंड आगे की बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो देख रही थी मेरी मम्मी मेरे बाजू में बैठी हुई थी और वो भी ये वीडियो देख रही थी, और उसके बाद आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों से अच्छे तो कुत्ते हैं। आई मीन लुक एट दैट क्रीचर, कितना ज्यादा समझदार है। तुमसे तो कपड़े भी नहीं उठाए जाते। तुम्हारी कोई चीज जो है वो बाहर पड़ी हुई है, एकदम से बारिश आनी शुरू हो जाएगी तो तुम बॉदर भी नहीं करोगे देखने का कि कुछ उठाना है, कुछ देखना है, यहाँ है वहां है, कुछ नहीं देखोगे। जहां पड़े हुए हो वहां पे पड़े रहते हो। तुमसे अच्छा तो ये कुत्ता है। मुझे लगता है मुझे तुमको भगा के एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। या दैट्स व्हाट शी सेड। That's what she said, मेरे मुंह पर, like literally on my face. Can you imagine? मतलब ठीक है, mommies जो है वो बहुत ज्यादा रोस्ट करती है अपने kids को, पर इतनी हद तक कौन रोस्ट करता है? मतलब I also love dogs and I think that dog is really really intelligent. But the thing is कि मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि mom it's AI because it was clearly not. बट या आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो गलती से अपने घर वालों को मत दिखा दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको भी वही प्रवचन सुनने को मिलेंगे जो मुझे मिले थे कि कुत्ता पाल लेना चाहिए तुम्हें भगाकर। जी हाँ, ऐसी वाली बात आपके घर वाले भी कह सकते हैं। या दे कैन डू इट, माई मॉम कैन लिटरली रोस्ट एनी वन। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने वहां पर कुछ देखा पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए है। और वहां पे लिखा हुआ था कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इन सिक वी शुड बी एबल टू कॉल इन हेल्दी। आई एम नॉट कमिंग इन टूडे, आई फील रियली गुड एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट एट वर्क। भाई बात तो सही है कि मतलब जब भी हमको काम पे नहीं जाना होता है, हम यही बहाना क्यों मारते हैं कि आई एम सिक, मतलब हम बीमार हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। कभी कभी हमें सीधा सीधा ये भी बोल देना चाहिए कि आई एम फीलिंग वेरी गुड टूडे, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी एंड आई डोंट वॉन्ट टू फील अनहेल्दी एंड दैट इज वाई आई एम नॉट कमिंग टू वर्क बिकॉज आई एम फीलिंग रियली हेल्दी। और मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ तो मैं अनहेल्दी फील नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम पे नहीं आ रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट छुट्टी दे दो चुपचाप करके। या दैट्स वट इट मेंट एंड आई वॉज लाइक या क्यों बोलना है हमको कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे। सीधा सीधा बोलो हम बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं और हम अनहेल्दी ना हो जाएं, वो काम पर आकर वो स्ट्रेस वो एंजाइटी वो हम सबको ना छुए, इसलिए हम काम पे नहीं आना चाहते। सीधी सी बात है। सो वी शुड बी कॉल इन हेल्दी। जी हाँ, वी शुड बी कॉलिंग इट इन हेल्दी बिकॉज दैट्स हाउ इट शुड बी। जी हाँ, सिर्फ बीमार पे ही छुट्टी क्यों लेनी है, हेल्दी होने पे भी छुट्टी ले सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान बोला अब इस्लामाबाद समझौता जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई। जी हाँ, ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों पर अमेरिका के नए हमलों और सेटकॉम की ओर से ईरान के दक्षिण हिस्से की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू करने के ऐलान के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि तेहरान और अमेरिका के बीच बनी समझ की बुनियादी रूपरेखा पूरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद समझौते जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। बुधवार सुबह दक्षिणी ईरान में कई धमाकों की खबर आई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सेना ने कहा कि वो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसके बारे में ट्रंप ने क्या कहा, आइए जरा आपको वो भी बताते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की घोषणा के 24 घंटे में ही यूटर्न लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है। फोकस न्यूज के संवाददाता टेरी यंगसिट के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता तो अमेरिकी सेना अगले सप्ताह देश के बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी करेगी। ट्रंप ने जमीनी अभियान चलाने की संभावना से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर मुझे लगता है कहना सही होगा तो मैं कह देता हूं। कभी कभी जमीनी अभियान की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जो हमारे लिए जमीनी अभियान चलाएंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने प्रभावी रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद भी कर दिया था।

0: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, खुजारो एयरपोर्ट इस मामले में बना देश का नंबर वन एयरपोर्ट। जी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, भारत की खबर है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के 2026 के राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स में मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एएआई के एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं, साफ सफाई और सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता के मामले में दोनों एयरपोर्ट का इस इंडेक्स में टॉप पर पहुंचना मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं आईबीएम को एक ही दिन में 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जी हाँ, दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी आईबीएम को अपने शेयर में जबरदस्त गिरावट की वजह से एक ही दिन में लगभग 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 58 साल में आईबीएम के शेयरों में ये सबसे बड़ी गिरावट है। मंगलवार को इसके शेयर 25% गिर गए थे। कंपनी के दूसरी तिमाही के शुरुआती नतीजे उम्मीद से कमजोर रहने के बाद शेयरों में ये गिरावट आई। 1911 में स्थापित कंपनी ने बताया कि जून में खत्म हुई 3 महीने की अवधि में उसका रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़कर $17.2 अरब रहा। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने निवेशकों को लिखे एक पत्र में कहा कि हमसे चूक हुई और हम खुद को बदलने और तेजी से आगे बढ़ने में नाकाम रहे। आईबीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का राजस्व 7% घटा। इसमें कंपनी का प्रमुख मेन फ्रेम कारोबार भी शामिल है। सॉफ्टवेयर से होने वाला राजस्व 5% बढ़ा, लेकिन ये भी उम्मीद से कम ही रहा।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
10: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is शाहरुख खान.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
12: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ. दोस्तों, कल ही की बात है कि मैं आपको बता रही थी फीफा वर्ल्ड कप वाले, फीफा एसोसिएशन जो है वो जो फाइनल खेलने वाले हैं, जहां पर फाइनल होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप का, वहां की ग्रास को ऑक्शन कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, और आप उसको खरीद सकते हैं और वो आपको डिलीवर भी हो सकती है. बट ऑफकोर्स मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आप उस पीस को रख सकते हो, उसका पार्ट बन सकते हो, और लेकिन आपको यूरोप या अमेरिका का होना है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में ही वो शिप करने वाले हैं उस ग्रास के टुकड़े को. ऑफ कोर्स उन्होंने एग्जैक्ट साइज नहीं बताया कि कितने कितने इंचेस का या कितने सेंटीमीटर्स का वो होने वाला है, बट उन्होंने इतना जरूर कहा है कि आप उस ग्रास को जिस पर फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा उसको खरीद सकते हो और उसके पास रख सकते हो. और अगर आप फीफा और फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हो तो ये मेमोरी आपके पास, कोर मेमोरी जो है वो हमेशा रह सकती है, आप उसे संजो कर रख सकते हो. जी हाँ, सो अगेन ये बात तो मैं आपको कल ही बता चुकी थी, तो आप बोलोगे कि अब क्यों बता रही हो निविया शर्मा, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि कल ही बता चुकी हो तो आज बताने की क्या जरूरत है. वेल, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है. कल मैं आपको बता रही थी फीफा वर्ल्ड कप वालों ने ऐसा किया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एक बंदे ने टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी का कचरा बेच डाला लोगों को, उन लोगों को जो कि टेलर स्विफ्ट के बहुत बड़े फैन माने जाते हैं, और वो लोग जो हैं वो टेलर स्विफ्ट की शादी का पार्ट तो नहीं बन सकते, तो उन्होंने सोचा कि ओके कोई बात नहीं, कचरा मिल रहा है तो कचरा ही खरीद लेते हैं. आप लोग बोलोगे कि पागलपंती की हद नहीं है निविया. वेल, आप सही कह रहे हो, पागलपंती की बिल्कुल हद नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई वॉज लाइक What are you talking about? Bottles, you know, और वो plates, और वो सारी की सारी चीजें जो है वो बंदा बेच रहा है, और उसने काफी सारे पैसे कमा लिए. जी हाँ, जो एक न्यूयॉर्क का बंदा है जिसने कि लिटरली लाखों डॉलर जो है वो कमा लिए, और उसने ट्रेविस केल्सी एंड टेलर स्विफ्ट की शादी का कचरा जो है वो बेचा है. मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उसने प्राइजेस क्या रखे हुए हैं. सो उसने हर एक पीस को $25 में बेचा है, और ये कलेक्टिवल के तौर पर आप ले सकते हो, खरीद सकते हो और आप उसे रख सकते हो. और हम लोगों को तो पता ही है कि टेलर स्विफ्ट के एकदम क्रेजी फैंस की कमी नहीं है इस दुनिया में, मतलब फीफा वर्ल्ड कप के फैंस की कमी नहीं है, वो तो मैं चलो एक टाइम पे मान लेती हूँ. और आपको ग्रास मिलने वाली है वो भी चलो कलेक्टिबल है, मतलब उसको भी आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब वो एक पीस है वर्ल्ड कप का जो आप अपने पास संजोकर रख सकते हो. लेकिन मतलब आप किसी के इतने बड़े फैन कैसे हो सकते हो कि उनकी शादी का कचरा ही ले लिया कलेक्टेबल्स के तौर पर? ओ माय गॉड. जी हाँ, सो 50 पीसेस जो है वो सोल्ड आउट हो गए थे अराउंड 24 आवर्स में, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही 50 से ज्यादा पीसेस जो है वो सोल्ड आउट हो गए थे, और फिर भी गिनती जो है वो चल रही थी. अभी तो पता नहीं वो बंदा कितना कमा चुका है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि पीपल आर क्रेजी. मतलब इतना भी क्या आइडलाइज कर लेना किसी को कि उसकी शादी का कचरा ही खरीद लिया. ओह, आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, और आप मुझे अपनी या ऑफ कोर्स अपना जो है वो कीमती जो है वो थॉट्स इस पे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सब के लिए मेरी तरफ से, जो कि जबरदस्त है, काफी जबरदस्त.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और दिलचस्प चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस माइट एक्साइट्स यू। जी हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? वेल, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी में आगे जो रूमर्स निकल कर आए हैं वो रियल है या नहीं है उसके बारे में अभी भी किसी ने एग्जैक्टली नहीं बताया है। जी हाँ, एक साइंटिस्ट जो कि लिटरली रिटायर्ड साइंटिस्ट है, जिनका नाम है एंथनी शेविज। जी हाँ, 78 ईयर ओल्ड ये रिटायर्ड साइंटिस्ट जो है वो लिंक्ड रहे लॉस एंजलिस की लॉस एल्मोस की नेशनल लेबोरेटरी के साथ, और मई 2025 में ये एकदम से गायब हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 78 इयर्स के हैं, नाम है एंथनी शेविज, काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और एकदम से अपनी रिसर्च को करते करते गायब हो जाते हैं। जब वो गायब होते हैं तो किसी को लगता है कि ठीक है, नॉर्मली बंदा जो है वो गायब हो गया है, उनको ढूंढने की कोशिश होती है, वो नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये बंदा किसी चीज पर रिसर्च कर रहा था, क्या उस रिसर्च की वजह से तो नहीं गायब हुआ है। जी हाँ, उनका केस जो है वो रिसेंटली रिसर्फेस हुआ है, जहां पर सोशल मीडिया में बहुत सारी बात हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि कैसे उनका गुम होना, उनका डिसअपीयरेंस जो है वो उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनकी रिसर्च से रिलेटेड है। नाउ कम टू द पॉइंट। जी हाँ, आप लोग बोलोगे निव्या शर्मा पॉइंट पर आओ, तो मैं आपको बता दूं कि वो क्वांटम फिजिक्स में ही जो है वो रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की हुई है, और उनका जो लास्ट रिटायर होने के बाद जो टॉपिक था वो भी क्वांटम फिजिक्स का ही था, लेकिन जो टॉपिक था वो क्या था, आइए जरा मैं आपको बताती हूँ। वो कर रहे थे क्वांटम सुपरपोजिशन को रिसर्च। जी हाँ, जो आइडिया है, द आइडिया दैट टाइनी पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस। जी हाँ, आपने सही सुना, और आपने इसके बारे में शोज भी देखे होंगे, मूवीज भी देखी होंगी। अगर आपने इंटरस्टेलर नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए, अगर आपने फ्रॉम नहीं देखा है तो आपको वो भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको गूगल खोल कर उस शो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब चल तो रहा है लेकिन जो ये बोल रहे हैं ये हमारे सर के ऊपर से क्यों जा रहा है। वेल, तभी आपको समझ आएगा अगर आप गूगल खोल के बैठोगे। एक्सेप्शन यही है कि आप ऑलरेडी फिजिक्स में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ चुके हो, आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर चुके हो और आपको वो चीज ऑलरेडी समझ आ रही है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल लोगों को गूगल के बिना वो देखना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की ऐसी टर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ नहीं आती हैं, सेंस नहीं बनाती हैं, वो तभी समझ आती हैं जब वो गूगल खोल के रखते हैं। नाउ अगेन पॉइंट पर आते हैं, ये बंदा जो है वो इसी टॉपिक पर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, और एकदम से ये गायब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मई 2025 को ये गायब हो जाते हैं, तब अथॉरिटीज इनको ढूंढने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी तलाश, बहुत सारा पुलिस का कारनामा, बट कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन अब बहुत टाइम बाद, मैं कहूंगी या एक साल बाद, ये रूमर्स उड़ने लगते हैं कि उनका जो लास्ट टॉपिक था वो क्वांटम फिजिक्स पे था, और वो भी एग्जैक्टली सुपरपोजिशन, द क्वांटम सुपरपोजिशन, जहां पे मैंने आपको बताया कि द आइडिया दैट टाइनी पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस, मतलब जो चीजें जो है वो दो या तीन प्लेसेस पे एक साथ हो सकती है, क्या पता इसी की वजह से वो बंदा भी गायब हो गया हो और वो किसी और डायमेंशन में चला गया हो, या पीपल आर लिटरली टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ऐसे ही इंसान हवा में तो गायब नहीं हो सकता, राइट? एंड वो लिटरली इस पे रिसर्च कर रहे थे, और जब साइंटिस्ट किसी चीज पे रिसर्च करते हैं ना तो वो उसमें घुस जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन। यू नो वॉट, सिर्फ ये रूमर नहीं है बल्कि मुझे भी ये लगता है, एंड आई थिंक मुझे सच में जो भी रूमर्स हैं या जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पे उनकी जो रिसर्च थी और उनका जो एग्जैक्ट टॉपिक था, उसी की वजह से वो गुम हुए हैं, एंड यू नेवर नो, क्या पता वो किसी और डायमेंशन पे हों। जी हाँ, इस वक्त, या फिर उससे भी किसी और डायमेंशन पे, मतलब क्या पता वो तीन से चार अलग अलग डायमेंशन में हो लेकिन हमारी वाली डायमेंशन में ना हो, या यू नेवर नो, दैट्स हाउ फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स वर्क्स। जी हाँ, यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो कि मेरी तरफ से नहीं है, ये गाना जो है वो एक रिकमेंडेड सॉन्ग है, और इसकी रिकमेंडेशन आई है हमारे
बहुत ही खास लिसनर मैं कहूंगी, लेकिन उनसे ज्यादा मैं कहूंगी हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। जी हाँ, मतलब लिसनर तो वो खास ही है भाई हमारे, क्योंकि वो गाने रेकमेंड करते हैं इतने मजेदार। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। और गाने का नाम है इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, क्या बात है, खूबसूरत गाना। और ये मतलब हमारे प्रोग्राम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में आता है, हमारी प्लेलिस्ट में भी रहता है, काफी बार हम इसे प्ले भी कर चुके हैं आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही प्यारी प्यारी रिकमेंडेशन, अच्छी अच्छी खूबसूरत रिकमेंडेशन करते रहिए। और या मेरे बाकी के लिसनर्स भी, आप भी आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि अब ओल्ड इज गोल्ड बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। और बिना देर करते हुए ये गाना आपके लिए।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे और आपके फेवरेट सेगमेंट का हो गया है वक्त, और मुझे सिर्फ इतना बोलने की जरूरत है क्योंकि बाकी की चीज तो आप खुद ही समझ आते हैं। मतलब बात हो रही है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की, पुराने गाने, पुराने किस्से और वो खूबसूरत से जज्बात, उन सब के बारे में बात होगी। आप भी अपनी फरमाइश लेकर आ जाइए जो आपकी पुराने गानों से रिलेटेड है, क्योंकि गाना है पुराना तभी तो बनेगा इसका तराना और फिर होगा फसाना। क्या बात है, निविया शर्मा कैन डू थोड़ी बहुत शायरी तो एटलीस्ट, है ना? आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं निविया शर्मा, बाकी सब ठीक है बट शेरो शायरी मत करना। जैसे तुमको गाना गाने के लिए मना किया है, शेरो शायरी भी प्लीज मत करना, बाकी हम सब झेल लेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ओके ओके ठीक है, मान जाती हूँ मैं, नहीं करती शेरो शायरी। यहाँ पर आपको गाना सुनाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा, और ये गाना जो है वो है बहुत ही खूबसूरत सा गाना, लता जी का गाया हुआ। जी हाँ, गाने का नाम है बदली से निकला। जी हाँ, बदली में चांद है। जी हाँ, बदली में चांद है, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अब मैं क्यों कह रही हूँ कि इसका ये ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये एक फरमाइशी गीत है। जी हाँ, ये एक फरमाइशी गीत है, और इसे फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी ने, और ये गाना सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आप तो बताइए, मौसम भी कुछ वैसा सा ही बन रहा है, मतलब थीम के साथ जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से उनके दिमाग में ये गाना जो है वो चल रहा है, और आई नो हाउ दैट फील्स। सो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम आपका ये गाना प्ले करने वाले हैं, इसको लेकर हम जो है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस गाने को प्ले करते हैं, और फिर आपके लिए और भी खूबसूरत से गाने लेकर आएंगे। जी हाँ, तो गाना है बदली में चांद है, और कभी धूप कभी छाओं का ये गाना है। 1971 में ये मूवी आई थी। बिना देर किए सुनते हैं

जी हाँ दोस्तों, जब भी बात होती है हिंदी सिनेमा की और उस एरा के हिंदी सिनेमा की, तो मेरा नाम जोकर जो है, मेरा नाम जोकर स्टैंड्स टॉल लिटरली। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी को बनाते बनाते लिटरली राज कपूर के खानदान की टांग टूट गई थी। एंड व्हेन आई से टांग टूट गई थी, आई एम नॉट सेइंग लिटरली, आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली। और ये बात मैंने नहीं बल्कि रणधीर कपूर ने कही है। जी हाँ, रणधीर कपूर कहते हैं कि इस मूवी को बनाते बनाते हमारे खानदान की टांग टूट गई थी। इनफैक्ट हमारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी एडिशनल प्रॉपर्टीज थी, वो बिक गई। मेरी माँ के गहने तक बिक गए। इस मूवी को बनने में 6 साल लग गए। इतनी ज्यादा कॉस्ट में ये मूवी बनी, लेकिन जब मूवी लगी तो इतनी ज्यादा नहीं चली। जी हाँ, आप इमेजिन कीजिए, राज कपूर ने इतना बड़ा रिस्क लिया, मेरा नाम जोकर बनाई। और अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आप बोलोगे क्या मूवी थी। ऑफ कोर्स उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे की सोच की वो मूवी थी, इसलिए लोगों को उस टाइम समझ ही नहीं आई। एंड दैट वाज द रीजन कि वो मूवी आज भी बहुत ज्यादा हिट है, लेकिन उस टाइम लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। रणधीर कपूर कहते हैं कि ऑफकोर्स ये सब तो हमें झटका लगा ही, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो मेरा नाम जोकर हमारे आके स्टूडियोज की सबसे ज्यादा मुनाफेदार प्रोजेक्ट्स में से एक है। मतलब उसके पैसे मुझे आज भी मिल रहे हैं, उसकी जो रॉयल्टी है वो मुझे आज भी मिल रही है। मेरा नाम जोकर जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद प्रोजेक्ट साबित हुआ अगर हम अब की बात करें। मतलब ओवर द ईयर्स उसने इतनी ज्यादा रॉयल्टी, इतने ज्यादा पैसे एक्यूमुलेट किए आरके स्टूडियोज के लिए कि मैं क्या ही बात करूं। लेकिन जब ये मूवी लगी थी तो उस टाइम लोगों को समझ भी नहीं आई थी। एंड आई एम लाइक या बात तो सच है, क्योंकि देर आर मेनी मेनी पीपल जिनको मेरा नाम जोकर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसकी तारीफ की है, लेकिन उस वक्त लोग इसकी खासियत को पहचान नहीं पाए थे। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और ये किस्सा है किशोर दा का, और ये किस्सा है उनके असिस्टेंट, जो कि 17 साल तक उनके असिस्टेंट रहे, सुधांशु शर्मा का, सुधाकर शर्मा का। जी हाँ, सुधाकर शर्मा जो कि उनके असिस्टेंट रहे काफी साल तक, उन्होंने किशोर दा के साथ काम किया। उसके बाद वो खुद बतौर निर्देशक जो है, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो अपनी पहली पिक्चर के गाने के लिए वो किशोर दा के पास ही आए। उन्होंने सोचा कि किशोर दा को जब पता चलेगा कि मैं ऐसे पिक्चर कर रहा हूं, तो वो आशीर्वाद जरूर देंगे और गाना जरूर गाएंगे मेरी पिक्चर में। और अगर किशोर दा ने गाना गा दिया तो डेफिनेटली मेरी पिक्चर जो है वो हिट होने वाली है। जब वो किशोर दा के पास पहुंचे तो किशोर दा ने कह दिया कि देखो, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूं, बहुत ही खूबसूरत गाना गाने वाला है, होने वाला है, लेकिन मैं इसके 17,000 रुपए लूंगा। जब सुधाकर शर्मा जी ने ये सुना तो वो एकदम सन्न रह गए, क्योंकि 17,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी और उस वक्त उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उनको एक पिक्चर बनानी थी और सिर्फ गाने के लिए वो इतने पैसे नहीं जो है वो निकाल पाते। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से किशोर दा के लिए वो 17,000 रुपये का इंतज़ाम किया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और किशोर दा को 17,000 रुपये दिए। किशोर दा ने गाना गाना शुरू किया, बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने गाया। और सुधाकर शर्मा जी ये सोचने लगे, सुधाकर जी ये सोचने लगे कि क्या बात है, मतलब अब फील ही नहीं हो रहा है कि 17,000 रुपये जो है वो मैंने इतनी मुश्किलात से इकट्ठे किए और वो किशोर दा को दिए, क्योंकि किशोर दा ने जो गाया है वो बाकमाल है, मतलब फील ही नहीं हो रहा है, मतलब वो, मतलब बनता था, वो डिजर्व करते थे वो। बस फिर क्या था, जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो वो सुधाकर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कर, एक और अंतरा मुझसे गवा ले, क्योंकि तूने अब 17,000 रुपए दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक और अंतरा मैं इसके लिए गा देता हूं, तुम्हारे लिए गा देता हूं। और उन्होंने वो गाया, वो सब लोग देख रहे थे कि कैसे 17,000 रुपए किशोर दा ने लिए, एक एक्स्ट्रा अंतरा उनके लिए गाया। और फिर किशोर दा कहते हैं कि चल ठीक है, अब एक फोटो भी खिंचवा लेते हैं। अब सुधाकर जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये किशोर दा के साथ मैंने 17 साल काम किया है, पर इन्होंने कभी भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाई, आज क्यों कर रहे थे। बट वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे, वो उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। गेस व्हाट, वो बाहर आते रिकॉर्डिंग स्टूडियो से और किशोर दा को वो उनकी गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, और किशोर दा अपनी जेब से वो 17,000 रुपये निकालते हैं और सुधाकर जी की हाथ में रख देते। सुधाकर जी कहते हैं कि ये किशोर दा, ये क्या, ये क्यों आप मुझे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ मत बोल, किसी से मत बताइयो कि मैंने ये पैसे तेरे को वापस कर दिए हैं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, बस ये जा और सीधा अपनी बीवी के हाथ में ये दे दे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं तेरी मूवी के लिए। जी हाँ, पर आप सब सोचोगे कि किशोर दा अगर सच में ऐसा ही करना चाहते थे तो वो उन्होंने घुमा फिरा के क्यों किया? Well, किशोर दा ये दिखाना चाहते थे कि मूवी मेकिंग इज नॉट अ इजी बिजनेस, इफ यू आर गोना मेक अ मूवी तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो वो उनको तैयार कर रहे थे। लेकिन आखिर में उन्होंने जो है शुभकामना भी दी और पैसे भी वापस किए और साथ में उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया। तो मतलब वो लेसन तो उन्होंने उन्हें दे दिया, लेकिन साथ में अपना आशीर्वाद भी दे दिया। ये सिर्फ किशोर दा सोच सकते थे, राइट? यहाँ पर अब एक और गाना आप सबके लिए, लेकिन ये गाना जो है वो आखिरी होने वाला है इस प्रोग्राम का, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, वापस आएंगे कल, और कल बहुत सारी मस्ती करेंगे, गाने आपको सुनाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, गपशप होगी और लाजवाब गाने होंगे। लेकिन आज के लिए आपको मजे करने हैं, कुछ अच्छा सा सुनिए, कुछ अच्छा सा देखिए, कुछ अच्छा सा पढ़िए, या जो भी आपको अच्छा लगता है करना वो कीजिए, अपने घर वालों के साथ बैठ के गपशप मारिए, क्योंकि वो वाला टाइम भी बहुत ही खूबसूरत होता है। दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: ਹੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: हनी ये तुम कहां ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन को मिली LNG 2029 की मेजबानी। जी हाँ, ब्रिस्बेन ने एक बहुत बड़ी वैश्विक कामयाबी हासिल की है। साल 2029 में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉन्फ्रेंस ब्रिस्बेन में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ स्कूल में चाकूबाजी मामले में सुनवाई। इस्लामिक कॉलेज ऑफ ब्रिस्बेन में कल दोपहर हुई चाकूबाजी की घटना के बाद आरोपी 16 वर्षीय लड़के को आज रिचलैंड्स चिल्ड्रंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस आपसी झड़प में घायल हुए 17 साल के छात्र की हालत अब अस्पताल में स्थिर बताई जा रही है। वहीं फ्लाइट में बदसलूकी करने वाला ब्रिस्बेन का शख्स गिरफ्तार। पर्थ से सिडनी जा रही एक घरेलू फ्लाइट में महिला पैसेंजर के साथ बदसलूकी करने के आरोप में ब्रिस्बेन के एक 64 वर्षीय व्यक्ति को सिडनी एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं बर्ड फ्लू की जांच आई नेगेटिव। जी हां, क्वींसलैंड के नूसा बीच पर मिले एक बीमार समुद्री पक्षी की वजह से पूरे राज्य में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही थी। राहत की बात यह है कि आज आई इसकी टेस्ट रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव निकली है। वहीं बेम्बैक इलाके में आज प्लांट

0: बर्न। जी हां, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज यानी बुधवार सुबह 10 बजे से बम्बेक के लॉन्गटन कोर्ट पार्क में झाड़ियों को नियंत्रित रूप से जलाने का काम करा और काउंसिल ने आसपास के निवासियों और ड्राइवरों को सलाह दी कि रात में इस इलाके से धुआं बढ़ सकता है, इसलिए खिड़कियां बंद रखें। वहीं फुटबॉल क्वींसलैंड का नया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फुटबॉल क्वींसलैंड ने आज ग्रीन रूम फ्यूचर्स के साथ एक नया मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत क्वींसलैंड के उभरते हुए युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को अमेरिका के कॉलेजों में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप और सीधे खेलने के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू। जी हां, भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आज यानी 15 जुलाई से पूरी तरह लागू हो गया है। इसी के तहत अमृतसर एयरपोर्ट से यूके के लिए पहली कार्गो शिपमेंट रवाना की गई है जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स भेजे गए हैं। वहीं सोने की कीमतों में भारी उछाल, लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद आज घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर कमजोर होने के बाद भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 770 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है। वहीं अमरावती चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत, आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आज से अमरावती चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है। इसी के साथ इंडिपेंडेंस के कॉम्पिटिशन्स की आखिरी तारीख, जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और माय गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस 2026 के नेशनल ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग लेने की आज यानी 15 जुलाई की आखिरी तारीख है। वहीं भारतीय एजेंसी FIUIND को ग्लोबल सम्मान, भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को दुनिया भर में उनकी बेहतरीन जांच के लिए उपविजेता का अवार्ड मिला है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन मिशन पर, जी हां, भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने रूस के सोयुज स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी पहली उड़ान भर दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में टैक्स लगाने की अपनी धमकी को फिलहाल वापस ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर खाड़ी देश अमेरिका में निवेश बढ़ाते हैं तो वो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा बिना किसी टैक्स के करते रहेंगे। वहीं POJK में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में आज सुबह सैकड़ों स्कूली बच्चों ने अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बच्चे वहां पर पाकिस्तानी सेना के क्रूर रवैये का विरोध कर रहे थे। वहीं पेरिस में बेस्टिल डे परेड, जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड के मौके पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगुवाई में एक शानदार सैन्य परेड का आयोजन किया गया। वहीं यूक्रेन का बड़ा हवाई हमला, यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने कल रात राजधानी कीव की तरफ आ रही रूस की 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। वहीं चीन के कार एक्सपोर्ट ने रचा इतिहास, चीन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने चीन का मंथली कार एक्सपोर्ट पहली बार 1 मिलियन गाड़ियों के पार निकल गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्पेन पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले रोमांचक सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना सेमीफाइनल की तैयारी, वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला अर्जेंटीना के लेजेंड लियोनेल मेसी से होने जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा कि वे मेसी को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं पहले वनडे में भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत। जी हां, वहीं क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय टीम ने एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं एमएलबी ऑल स्टार गेम में ऐतिहासिक जीत। अमेरिका के मशहूर बेसबॉल लीग एमएलबी के ऑल स्टार गेम में अमेरिकन लीग के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए नेशनल लीग को 4-0 से हरा दिया। वहीं विमेन्स बास्केटबॉल में बड़ा बदलाव। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अगले सीजन से अमेरिका के मशहूर NCAA विमेन्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट में एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है। अब टॉप 16 टीमों को बिना किसी कॉन्फेडरेशन की पाबंदी के उनकी असली रैंकिंग के हिसाब से मैच खेलने को मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

ਸਾਸ਼ਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ 101 ਐਮ ਤੇ ਜਿਗਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ अमरीकी फौज ने ईरान विच पनडुब्बी अते जहाजा दी देखभाल दे केंद्र ते हमला कर दिता। सेंट्रल कमांड नू ने दस्या है कि फौज ने एतवार नू कई ड्रोना दा इस्तेमाल करदे होए इन्हां ठिकाणियां ते हमले किते। सेंट्रल कमांड ने एक्स पोस्ट करदे लिखा है कि कल सेंटकॉम दियां फौजां ने कई वन वे अटैक ड्रोना दा इस्तेमाल करके ईरान विच पनडुब्बी अते जहाज दी देखभाल दी सहूलत ते सफलतापूर्वक हमला किता। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ पोर्ट ते हमला किता। ए पहली बार सी जदों अमरीकी फौज ने जंगी मुहिम विच समुद्री ड्रोन दा इस्तेमाल किता सी। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछली रात दे हमलिया ने ईरान दी व्यापारक शिपिंग ते हमले जारी रखन दी समर्था नू घट कर दिता। ए घटना अमरीकी फौज ते उस बयान तो कुछ घंटिया बाद आई है जिस विच उसने कहा सी कि सोमवार नू उसने दर्जना ठिकाणिया ते हमले किते। इन्हां विच एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइटां, मिसाइलां ते ड्रोन उपकरण ते छोटियां किश्तियां शामिल हन। इस तों पहलां सोमवार नू अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि असीं ओरमुज स्ट्रेट ते कब्जा कर रहे हां। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके तनाव वधदा ही जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को रावलकोट में आम नागरिकों विरुद्ध कार्रवाई की, जिस नाल शहर के नवे बस टर्मिनल के नेड़े मुड़ झड़पां शुरू हो गई। इन झड़पां दौरान पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में 6 आम नागरिक मारे गए। मारे गए लोगों में जाहिद मुगल, जफर मुगल, असलान अकबर, वाजिद हयात शामिल हैं। रावलकोट के मठियाल मीरा बस टर्मिनल वाजिद हयात की मौत हो गई। इस ताजा हिंसा ने खेतर विच तनाव होर वधा दिता है, जिथे इस्लामाबाद विरुद्ध नाराजगी लगातार वधदी जा रही है। इस हिंसा तो एक दिन पहला अमरीका विच रह रहे मकबूजा कश्मीर भाईचारे के मैंबर वाशिंगटन विच व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठे हुए। उन्होंने खेतर विच तेजी नाल विगड़ रहे मनुखी संकट नूं अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का ध्यान मंगया है। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना ते 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय रैना ने अदालत नूं गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट टैलेंट विवाद ते समय रैना नूं अदालत दे निर्देशां दी उलंघना करन ते सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि रैना ने कोर्ट नूं घुमा रख्या है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करदिआं कहा है कि समय रैना किस तरह के यूथ आइकन हन, ए सोच के चिंता हुंदी है। ਤਾਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए अच्छी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसर ओवन एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा वेला हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा। पर अज मैं कल्ली नहीं हैगी, अज थोड़े नाल गल्लां करन दे लई मतलब साडे नाल गल्लां करन दे लई खास मेहमान ने। तां उह मेहमान अजे हैगे ने जिन्हां दी फिल्म आ रही है, ते जदों जदों कोई फिल्म लैके आए ने या कोई गाणा लैके आए ने ते बहुत ही बाकमाल हुंदा, बहुत ही ज्यादा शानदार ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਜਸੜ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ।

0: भरतमान को दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रो एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिए, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: हनी ये तुम कहां ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है। ऐसे तो सुनो, मूवीज की गल की, कॉन्टेंट की गल की, एज अ एक्टर थोड़ी गल करिए ना जी, तरसेम तो एज अ एक्टर थोनू थोड़े अनुसार एक एक्टर दी जिहड़े अलग अलग, क्योंकि अजकल फिल्मां दे जिहड़े जोनर ने बहुत अलग अलग हैगे ने, बहुत कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आने तो बाद तां कंटेंट भी बहुत बदलता जा रहा है ना, तो एक
1: जी
0: कलाकार दे तौर ते एक कलाकार दी सब तो वड्डी जिम्मेवारी थोनू की लगता है की हुंदी है?
1: मैनू लगता जी, जिन्नी अपनी चेयर वड्डी हुई जाती है ना जी, उन्नी अपने ते जिम्मेवारी वधी जाती है। सो एक कलाकार दी भी एक मतलब थोनू लोकां वल्लों मिलिया होया माण हुंदा, थोनू एक चेयर मिल जाती है भी तुसी उन्हां दे एज ए रिप्रेजेंटेटिव तुसी एक्ट करते हो, है ना जी। सो असी साडे वल्लों
0: हाँ
1: तां ही ये हुण जिवें ये फिल्म भी है जी, इहदे विच वी जां कंटेंट जिन्ना भी चूज करदे हां जी, ट्राई हुंदी आ उहनूं बड़ा वाइजली चूज करिए, क्योंकि जिवें तुसी ओटीटी दी गल करिए तां ओटीटी ते नो फिल्टर आ जी। हुण अजकल तां मतलब इह गल हुण मान लो इदां दी हो गई आ कि एक घर दे विच सारा परिवार इकट्ठे बैठ के जे एक चीज लाउणी होवे तां थोनू उंगलां ते गिण के फिल्मां लभ सकदियां वी, सिर्फ इन्नियां के लग सकदियां ने, इह तों ज्यादा कंटेंट तुसी इकट्ठे बैठ के देख ही नहीं सकदे।
0: बिल्कुल
1: सो
0: सही,
1: सेम
0: बिल्कुल
1: सेम
0: सही।
1: चीज हुण सिनेमे दे विच आ गई जी। सिनेमे दे विच वी हुण मतलब इदां ही चल पिया काम, ज्यादातर कंटेंट हैगा जिहदे विच मतलब जे आपां पंजाबी दी गल करिए तां पंजाबी दा मतलब मैनूं लगदा पंजाबी फिल्म दा मतलब हुंदा जी अपना कल्चर, ठीक है जी। हुण आपां अज बाहर बैठे
0: बिल्कुल
1: वी इह पंजाबी फिल्म नूं देखण जांदे आ, उहनूं प्यार करदे आ, तां उह इक पंजाबी होण दे नाते करदे आ वी असीं पंजाबी आ, साडी साडी भाषा दी साडी लैंग्वेज दी मूवी आई आ, असीं उहनूं सपोर्ट करनी आ, असीं यार देखदे आ, साडा कल्चर दिखूगा, बच्चिआं नूं दिखावांगे ते इहनां दा वी थोड़ी अटैचमेंट जुड़ी
0: हाँ
1: रहूगी रूट्स नाल, ठीक है, इहनां नूं कल्चर दिखूगा। सो अपना मैनूं लगदा वी इह चीज़ दा अपना टारगेट हुंदा। सो जे जिहड़ी मूवी उह टारगेट पूरा नहीं करदी तां आपां फिर डिसअपॉइंट हुंदे आ, यार असीं पंजाबी फिल्म क्यों देखणी सी, असीं कोई होर देख लैंदे, असीं होर कल्चर तां असीं हॉलीवुड 'च वी देख सकदे हां। सो मैनूं लगदा वी उह मोर लाइक पंजाबी फिल्म दा मतलब हैगा जी रियलिज्म दे नेड़े होवे, चाहे उह थोनू हसाउंदी होवे, चाहे उह थोनू कोई ड्रामा होवे, चाहे उह एक्शन होवे, बट उह रियलिज्म दे नेड़े होवे,
0: बिल्कुल
1: तुसीं नाल रिलेट कर सको, थोनू उहदे विच घट्टो घट पंजाबी कल्चर दी खुशबू आउणी जरूरी है जी। सो उह चीज़ असीं हमेशा मेक श्योर करदे हां जी वी जिहड़ी फिल्म होवे तां उहदे विचों उह मिट्टी दी खुशबू ते अपना कल्चर दी खुशबू उह जरूरी है जी आउणी।
0: बिल्कुल। अजकल ना जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है

0: ही है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह दिए, जिसके बीच आप सारा कुछ ले लिए, बॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री ओटीटी सब कुछ कंबाइन करिए ना जी, एट द सेम टाइम इतने एक्टर्स भी बहुत सारे ने, नो डाउट बहुत टैलेंटेड एक्टर्स ने जिहड़े बहुत शानदार एक्टिंग करते हैं बट अंडररेटेड रह जाते हैं, है ना। ते तुहानू की लगता पंजाबी इंडस्ट्री सेम, क्योंकि बहुत ज्यादा उपर उठ रही है ना पंजाबी इंडस्ट्री, बॉलीवुड नू पूरी टक्कर दे रही है, ते पंजाबी इंडस्ट्री दे विच तुहानू लगता है कि तुहाडे अकॉर्डिंग की चीज है कि अपनी एक पहचान बनाना ज्यादा मुश्किल है या फिर सफल बनना ज्यादा मुश्किल है?
1: देखो जी, सारे किते सेम आ, मैनू ये लगदा। बॉलीवुड दे विच देखो तुसीं, बॉलीवुड दे
0: नहीं
1: विच
0: नहीं
1: तां जी
0: बिल्कुल सेम।
1: है ना, बॉलीवुड दे विच तां जी तुसीं ये देखो भी कई बार 20-20 साल स्ट्रगल तो बाद भी एक्टर एस्टैब्लिश नहीं हो सके जी। बॉलीवुड दे विच अपनी पंजाबी इंडस्ट्री दे विच तां फिर भी जी तुसीं ये देखो किसे ना किसे नूं ब्रेक मिल जांदा, ते ब्रेक तो बाद जी उहदा चलना ना चलना उह उहदा लक हुंदा जी। बट जे आपां कहीए ब्रेक नहीं मिलदा, ये नहीं हैगा जी। ब्रेक डेफिनेटली मिले ने जी सारिआं नूं, आर्टिस्टां नूं मिले ने जी, चाहे वह एक्टर्स ने है ना, चाहे वह किसी भी तरह के विच सीगे, चाहे वह टेक्निकल क्रू के रूप के विच ला लो, फिल्म मेकिंग च ब्रेक सब नूं मिले ने जी। डायरेक्टर का ब्रेक भी सब नूं मिले। उस तो बाद जिहड़ा चलना हुंदा जी वह लक हुंदा। सो जिहड़ा किसी नूं भी, जे किसी नूं भाग लगते हैं जी, जे सब तो वध हुंदा जी लोगों का प्यार। लोग किहनूं प्यार करते हैं? जिन्हों लोगों ने प्यार, जिन्हों नूं लोगों वालों प्यार मिल जाए जी, लोगों वालों हुंगारा मिल जाए, वह अपने आप अगे आ जाता जी। फिर चाहे उन्होंने छोटा जा रोल मिलया हो, उन्होंने लोगों वालों ही इन्ना प्यार मिल जाता जी। हुण मैं थोड़ा एक निकी जी एग्जाम्पल दिना। हुण फीफा वर्ल्ड कप चलता सीगा जी, ठीक है। वर्ल्ड कप दे विच एक गोलकीपर आ जी, ठीक है। एक टीम दे विच एक गोलकीपर सीगा, ठीक है। वो उहदे पहला उहने इन्ने एक सेव कीते, वो बंदे दे इंस्टाग्राम अकाउंट ते 2 मिलियन फॉलोअर सी। अज वो बंदे दे 15 मिलियन फॉलोअर ने सिर्फ 3-4 मैचों तो बाद, क्योंकि उन्हें सेव इन्ने करते। जिहड़े उन्हें नहीं भी जानते उहदे इंस्टा ते जा जा उन्हें फॉलो करते हैं। सो जिहड़ी ये हुंदा जी, ये हुंदी है सक्सैस हुंदी है जी थोड़ा हार्डवर्क, ते उस तो बाद थोड़ा लक, परमात्मा वालों ब्लैसिंग जी। सो जिन्हें
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: रजिस्टर
0: सही।
1: होना जी, वो कई बार छोटे जे रोल तो भी रजिस्टर हो के लीड रोल तक आ जाता, ठीक है। ते जिन्हों कई बार नई भागां दे विच हजे समां लगना हुंदा, नहीं मिलना हुंदा, कई बार लीड रोल तो भी पिछे जाना पै जांदा जी। सो ये मैनूं लगदा जी सक्सैस ते ये जिहड़ी मंजूरी है, ये उहदी ब्लैसिंग है जी, ते लोकां दा प्यार आ। जिन्हों मिलदा जी वो आपे अगे आ रहा।
0: बिल्कुल। अच्छा, जिवें बॉलीवुड की गल कीती ना आपां,

रिहाइश ले 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा देती है। अते लोड़वंदा ले 53500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: सारे एक्टर्स ने जिहड़े पंजाबी वाले मैक्सिमम बॉलीवुड वाल जा रहे हैगे ने, तो बहुत ही सोहना शानदार काम कर रहे ने। बेशक एमी विर्क होवे, हार्डी संधू होवे, जैसी गिल होवे, सारे। जे तुसी बॉलीवुड दे विच ये फिल्म बनाउणी हुंदी दस्तार, तां की इसका असर आ जिहड़ा वो कुछ वक्खरा हुंदा या सेम रहिंदा?
1: देखो जी, गल हैगी आ फिल्म दी रिलीज ते उहदे मैसेज दी, है ना जी। मैनू लगदा जिहड़ा मैसेज आ जी उह वधिया मेकिंग नाल ते वधिया लोकां च कन्वे होणा चाहीदा। नो डाउट, जिन्ना थोड़ी स्टेज ते
0: बिल्कुल।
1: प्लेटफॉर्म वड्डा होई जांदा उन्ना थोड़ा इंपैक्ट, ते जिवें आपां लाइट जिन्नी उच्ची करके ला दिंदे आ उन्ना उहदी रोशनी उह दूर तक जाण लग जांदी है जी। सो इट्स सेम लाइक दैट। जे आपां पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दी गल करदे आ, मैं बार बार हमेशा एक गल कहिंदा हुंदा जी, भी आपां ग्रो करिए। जे साउथ वाले आपणे सिनेमे नूं इस तक ले जा सकदे आ तां पंजाबी सिनेमा भी जा।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: सकता जी। पंजाबी बोली नू सुनने वाले, प्यार करने वाले, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं आपां वो।
1: बहुत ज्यादा है, क्योंकि अज मेरे ख्याल से अज के टाइम से कोई बॉलीवुड मूवी यह जी नहीं जिसे पंजाबी सॉन्ग नहीं चल रहा।
0: हाँ जी देखो, ते वो पंजाबी म्यूजिक अपना बहुत अगे तक जा रहे हैं जी, पर हजे अपना थिएटर
1: हाँ
0: दे विच उस हद तक पंजाबी फिल्मां लई नहीं जान लगे। जे होऊगा जी तां उही गल हो जानी है जी, अपना अपनी स्टेज वड्डी हो जानी है, अपना प्लेटफॉर्म वड्डा हो जाना, तां आपां अपने कल्चर नूं बैटर तरीके नाल दिखा सकदे हां, क्योंकि किसी भी स्टेट दा कल्चर उत्थों दे लोक उहनूं ज्यादा बैटर दिखा सकदे हैं जी, जिहड़े उहदे नाल जुड़े हुए आ, है ना। हुण जे मैं कहां आपां, मैं किसी होर स्टेट दा कल्चर दिखाउणा होवे तां शायद मैं उहदे नाल 100% इंसाफ नहीं कर सकदा जी, क्योंकि मैं उह कल्चर नूं विच रहि के नहीं देखिआ होइआ। जिन्हां ने देखिया हुंदा ओह उहनूं बहुत वधिया तरीके नाल पेश करदे आ। हुण साउथ दा सिनेमा साउथ दे कल्चर नूं इन्ने बैटर तरीके नाल पोर्ट्रे करदा, तां उहनां वर्गा कोई होर नहीं कर
1: बिल्कुल
0: सकदा सी। तां उहनां ने अपना कल्चर, अपने कल्चर दी रिचनेस सारे वर्ल्ड वाइड दसी आ, तां आपां वी अपने पंजाबी कल्चर दी रिचनेस वर्ल्ड वाइड दस सकदे हां।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: अच्छा कदे जिंदगी दे विच इस दस्तार तो थोड़ा हटके थोड़ी पर्सनल लाइफ से जाइए चेतर से, कदे जिंदगी दे विच इहो जा होया है कि तुसी करियर दा कोई फैसला लिया होवे जिस ते लोकां ने पहला सवाल चुके होण ते अज ओही सब तो वड्डी ताकत बनिया होवे थोड़ा?
1: कंटेंट सिलेक्शन जी, मूवीज दा कंटेंट
0: हाँ
1: सिलेक्शन ते गाणियां दा कंटेंट सिलेक्शन, यही सवाल दा
0: बट
1: कारण
0: आई
1: सीगे जी,
0: थिंक थोड़ा
1: अज
0: कंटेंट
1: यही
0: सिलेक्शन है ना
1: एप्रिसिएशन दा
0: जरा
1: कारण।
0: तो हाँ, पर मैं थोनू मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी जरा कंटेंट सिलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। बेशक थोड़े पंजाबी सॉन्ग सोने या फिल्मा होन आज भी हर जुबान पे है क्योंकि थोड़े
1: जी
0: सॉन्ग्स भी बहुत सोने
1: नहीं,
0: हुंदे आ
1: थैंक
0: ते
1: यू जी,
0: थोड़े
1: थैंक यू,
0: फिल्मा भी। अच्छा राजा सिंह,
1: थैंक
0: एक
1: यू।
0: जे थोड़े कोल सिर्फ ना सिर्फ 60 सेकंड होन, मान लो कि 60 सेकंड है थोड़े कोल, तो तू पूरी दुनिया सिर्फ थोनू ही सुन
1: हाँ
0: रही है,
1: जी,
0: तो तुसे 60 सेकंड दे विच कोई अपने दिल की गल कहनी है तो तुसे की कहोगे?
1: मैं पहला तो जी सारिया बहुत प्यार दूंगा, मैनू बहुत ब्लैसिंग आ थोड़े प्यार दी, परमात्मा दा शुक्र, थोड़े सब दा शुक्र, ते मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करदा कि मैनू बस प्यार मिलता रहे, ते मैं उम्मीदा ते पूरा उतरदा रहा, मैनू इन्ना बल मिले जिहड़ी किरत मैं करदा, यार हमेशा मिलता रहे।

0: काम काट।
1: जी अच्छा, छोटा जा, एक रैपिड फायर कर लिया, छोटा जा फिर
0: जी
1: लास्ट क्वेश्चन।
0: जी
1: अच्छा, लिगेसी और लग्जरी, टिक
0: लेगेसी
1: या स्टारडम?
0: स्क्रिप्ट
1: दिलजीत दोसांझ या एमी विर्क?
0: दोनों जी, दोनों साढ़े पगां ने भरा।
1: विलेज लाइफ या सिटी लाइफ?
0: विलेज लाइफ जी।
1: बुक्स या सोशल मीडिया?
0: बुक्स जी
1: एक्टिंग या राइटिंग?
0: बोथ दोनों नहीं छोड़ सकते जी।
1: अच्छा, वन पंजाबी आर्टिस्ट से जो थानू लगता है कि अंडररेटेड है?
0: हरमनजीत राइटर दे तौर ते जी, हरमनजीत
1: जी
0: बहुत कमाल दा राइटर आ, पर हजे उन्हों उन्ना नहीं, मतलब कमर्शियल वर्ल्ड दे विच उन्हों उन्ना नहीं जाने जान्दा, पर बेस्ट, वन ऑफ द
1: अच्छा,
0: बेस्ट राइटर है आज दे समय दा जी, हरमनजीत।
1: एक चीज जो तुसी पूरी दुनिया नु, पूरे लोकां सब नु कहना चाहोगे जो थोड़े बारे अज्यूम करना बंद कर दें, जो थोड़ा तुसी सुनिया होवे अफवाह अपने बारे, कि ये अफवाह, इस बारे सोचना बंद कर दो, कोई एक चीज।
0: वो एक चीज यही है जी भी शायद, मतलब मैं बहुत पता नहीं गुस्से वाला या मतलब भी ये अपने आप नूं लैके बहुत फसी जा होगा, है ना, वो चीज मैनूं लगदा भी
1: हाँ,
0: शायद वो बहुत बड़ा एक लेखा साहब नूं
1: पर्सनैलिटी ये हो जाता है, ये चीज सच्चा। देखो जी, 20 साल बाद ना लोग सचिन जसड़ नु सिर्फ सिर्फ एक गल करके याद रखना, ना ता वो केड़ी होगी?
0: दस्तार जी।
1: ओ वाह, वेरी गुड। मतलब इतना शानदार जो दिते ना, इतना मजा आया ना थोड़े नाल गल करके, ते हो बहुत ज्यादा वधिया मूवी होगी, क्योंकि जिम मैं पहला कह सके कि ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत मजेदार है। हमेशा की तरह जिहड़ियां तुहाड़ियां मूवीज ने वो चंगियां ही लगियां ने, गाने भी ते मूवीज भी, ते ए भी चंगी ही लगूगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी सारे। हो
2: गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हो गया
3: स्टार्ट? हो गया
2: स्टार्ट? हो गया। एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीज

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

सौ कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: गैरतमंद कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रो हिनेज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: दोस्त की खुशी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ये जीवन इतना अनमोल है कि हम जो चाहें अपनी सांसों के इस दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सांसों को, इस जीवन को, इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आइए आज एक बार फिर से कुछ सद्विचारों के साथ अपने ही जीवन को समझने की एक और कोशिश करते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के सुबह के खास सफर जीवन आधार में। श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, जीवन आधार के सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ। तो चलिए इस अगले गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु गुरु की महिमा अपरंपार है और आपको इस संसार के भंवर से अगर बाहर निकलना है, इस संसार के भंवर को पार करना है तो गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म बिना गुरु के जीना नहीं सिखा पाया है। गुरु की जरूरत हर धर्म में पड़ी है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सही ढंग से पूरा करने के लिए। इस संसार से पार पाने के लिए एक सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जीवन में अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। इसलिए गुरु पे भरोसा रखिए और गुरु से शिक्षा लेना मत भूलिए। गुरु है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत पार कर जाएंगे और इसीलिए तो शायद भगवान ने भी गुरु को खुद से ऊपर बताया है। तो आइए हम सबके गुरुओं को नमन करते हैं और सुनते हैं ये गुरुवाणी। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। ये सफर कुछ ऐसे विचारों से भरा है जो इस सुबह हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे हैं, और भी हमें जीने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। एक ऐसे ही विचार को आगे सुनने से पहले एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी का एक एक दोहा जीवन का सही महत्व सिखा देता है। कितनी सही बात है ना, जब जैसे चक्की चलती है और दो पटरों के बीच में जो भी कुछ पिसता है वो साबुत नहीं बचता है। ठीक इसी तरह से जब दो लोगों के बीच में आप पड़ते हैं, फिर चाहे वो आपके अपने हो गैर हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। आप पर भी उंगली उठती है, आपको भी दोषी ठहराया जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच सुलह कराने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी बात में फंस कर रह जाते हैं। आप भी उसी चक्की के एक पाटे के बीच में अनाज का एक ऐसा दाना बन जाते हैं जो उसमें पिस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पत्नी और माँ के बीच में अक्सर पति फंस जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत है। असल में जिंदगी में यही होता है, जब भी आप दो लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच आपका अस्तित्व भी आ ही जाता है। और यही जीवन का सत्य है, यही रिश्तों का सत्य है। इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

साक्षी को सुन रहे हैं आप जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कुछ ऐसे विचारों पर हमारा आपका साथ जो इस सुबह के साथ हमारे आज के दिन को भी खूबसूरत बनाते हुए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ओर एक अगला कदम है। अभी एक गीत के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद जीवन आधार में और भी कई खूबसूरत बातें आपके साथ बांटूंगी। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

कितने भी अच्छे कर्म करने की सोच लें, आप कितना भी गंगा नहा लें, आप कितने भी तीर्थ कराएं, आप मक्का काशी काबा कहीं भी घुमाएं, अगर मन साफ नहीं है तो आपको शांति भी कहीं नहीं मिलेगी और ऊपर वाला भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर ग्रंथ में एक ही तो बात कही गई है कि मन के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से या फिर ईश्वर ईश्वर ढूंढने से, जगह जगह घाट घाट पे जाके ईश्वर को ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक आप दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होंगे और दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, तब तक आपके मन का मैल धुला नहीं है और तब तक ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, आपको शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को साफ करिए, रोज नहाकर तन तो धो लेते हैं, मन का मैल भी धोइए। और मन का मैल गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, मन का मैल धुलेगा मन को साफ करने से, दूसरों के लिए खासकर अच्छे विचारों को अपने दिल में अपने मन में जगह देने से, अच्छे कर्म करने से। आइए उन्हीं कर्मों के नाम ये अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कभी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखे हैं, दुखी हैं, दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान देके हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 107.1 पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन को जानने का समझने का सुबह का हमारा खास सफर जीवन आधार। आज इस सफर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इस वादे के साथ कि कल फिर से जीवन आधार में कुछ अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर से हमारी जरूर होगी मुलाकात। ऊपर वाला आपको खुश रखे, रहम दिल रखे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, आपकी खुशियां बरकरार रहें, इसी मनोकामना के साथ आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, सत श्री अकाल, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, और आप सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त जॉनी जैन की तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दोस्त आप सभी के बीच हाजिर लेकर प्रोग्राम जाने का सफर ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी, जहां पर ना हर सुबह शुरू होती है पॉजिटिविटी, म्यूजिक और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। और इंटरेस्टिंग बातों के साथ जी ऐसा हो नहीं सकता आप और मैं मिलकर चाय या कॉफी ना लें, क्योंकि जी उसके बिना तो बातें अधूरी है ना। तो दोस्तों चलिए फिर अपने खूबसूरत सी मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं बहुत प्यारे प्यारे गानों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। और बस आंख बंद के प्रे जरूर कीजिए, आंख बंद करके, कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, पॉजिटिविटी के साथ जा रहा है, आप सभी के आसपास का जो एनवायरनमेंट है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा दिन आप सभी का गुजर रहा है। ये मैनिफेस्ट करेंगे ना तो सीरियसली ये मैनिफेस्ट आपका पूरा होने वाला है। बस अच्छा अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा होता रहेगा। आप मैसेज में जरूर मुझे बताइएगा आज का दिन आपका कैसे गया है। तो आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं खूबसूरत सा गीत ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक एज रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चौनी को चाने के सफर प्रोग्राम में। तो आइए फिर फील गुड करते हैं। वैसे तो आप सभी को अच्छी अच्छी फीलिंग ही मैं करवा रही हूँ क्योंकि हम सुन रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। तो आइए फिर क्विक हेडलाइंस को सुन लेते हैं। ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के फाइनल्स की रेस अब काफी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस ने प्ले ऑफ होप्स को बड़ा झटका दिया है। वहीं पर रॉक बैंड क्वींस ऑफ द स्टोन एज ने ऑस्ट्रेलिया टूर अनाउंस किया है और म्यूजिक लवर्स में एक्साइटमेंट देखने को भी मिल रहा है। तो आइए फिर हम भी एक्साइटमेंट आपको करते हैं एक्साइटेड इस सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सभी एंजॉय करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ या फिर मूवी नाइट प्लान कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस हो रहे हैं। इस वीकेंड भी कई इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और फैमिली एंटरटेनर्स जो देखने के लिए उत्साह है तो उनको ये जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप भी मूवी नाइट प्लान कर रहे हैं तो जी पॉपकॉर्न्स को ना रेडी रखिए और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कीजिए ओटीटी की दुनिया में। तो आइए फिर हम आपको ले जाते हैं म्यूजिक की दुनिया में। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे ना टेक्नोलॉजी की मैं हमेशा यहाँ पे बात करती हूँ। टेक्नोलॉजी ने ना कम्युनिकेशन का मतलब इतना कम्युनिकेशन को इतना फास्ट बना दिया है कि अगर जो मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ ना, आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप सभी जानते हैं हर दिन दुनिया भर में ना 300 बिलियन से भी ज्यादा ईमेल्स भेजी जाती है। ये है टेक्नोलॉजी का जादू। जी हाँ, काफी बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ आप सभी के लिए एक सवाल है, ब्रेन को टीज किया जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? जी हाँ, बताइए। पहले वाले का तो आंसर ये था कि ऐसी कौन सी चीज है, पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि ऐसी कौन सी चीज है तो टूट जाए तो दर्द बहुत होता है, और उसका आंसर था भरोसा। जी हाँ, जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसी के साथ आज का एक और क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? जल्दी जल्दी से ढूंढिए, जवाब दीजिए। ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी सुनते रहिए, और आइए फिर गीत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन इसका आंसर जरूर दीजिएगा।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ कुछ खबरों को जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने एक नेशनल ऑफिस ऑफ एआई बनाने की घोषणा जो है वो की है। इसका मकसद एआई को सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना और क्रिएटिव्स के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना है। वहीं पर दोस्तों, म्यूजिक न्यूज, ऑस्ट्रेलियन सिंगर डेल्टा गुडरम ने अपना जो प्योर वर्ल्ड टूर है वो अनाउंस किया है। टूर ऑस्ट्रेलिया से शुरू होगा और टिकट्स की प्री सेल आज से ही शुरू हो रही है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानेंगे थोड़ी ही देर बाद और भी अपडेट। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक है जी आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। तो आइए इसी के साथ अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग जाइंट BHP के पोर्ट हेडलैंड वर्कर्स आज जो है स्ट्राइक एक्शन पर जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी और नेगोशिएशंस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। वहीं पर अगर हम फुटबॉल अपडेट की बात करें तो 2026 और 27A लीग सीजन का ओपनिंग मैच सिडनी डरबाई होगा, जो कि 16th ऑफ अक्टूबर को खेला जाएगा। फुटबॉल फैंस के लिए ये सीजन का ब्लॉकबस्टर ओपनर माना जा रहा है। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन में आज सुबह ठंडी हवा के साथ ही साथ मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है, और अगर आप मॉर्निंग वॉक या ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो हल्का सा जैकर साथ रखना ना भूलिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। तो दोस्तों, मुस्कुराहट, हाँ जी, इसी मुस्कुराहट की बात कर रही हूँ जो आप इस टाइम कर रहे हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो देने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आइए जी, फिर ब्रेन कुटीज करना बंद करते हैं। मैंने आप सभी से पूछा था, ऐसा कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? बहुत लोगों ने जवाब दिया है, दिल। अरे नहीं, दिल टूटने के बाद कहाँ काम आता है? बदला लेने के लिए, अरे नहीं। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। लोगों ने कहा है एग। वाकई सही जवाब है एग, यानी कि अंडा। जब टूटेगा भाई तभी तो काम आएगा, तभी तो ऑमलेट बनेगा। कच्चे में तो ऑमलेट नहीं बना सकते हम, है ना, मतलब समझ गए ना। तो बहुत लोगों की ऐसे से जवाब ना, मजा आ जाता है अगर हम अपने ब्रेन को अच्छी जगह यूज करें ना, कि इससे पता लगता है हमारे में कितना दिमाग है। अरे दिल में मत लेना, मजाक कर रही हूँ। आइए जी, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, देखते ही देखते हमारा आज का मॉर्निंग शो अपने आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि आपको टाटा बाय बाय कहने जरूर आती हूँ मैं। तो दोस्तों, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और याद रखिए दोस्तों, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। हमेशा मैं आप सभी को कहती हूँ, और जाते जाते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो देने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तो इसीलिए मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहिए। आप सभी लिसनर्स का दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी सुबह रेडियो ब्रिस्वानी के साथ बिताई है। और अगर आप किसी गाने की फरमाइश, बर्थडे विश या फिर स्पेशल मैसेज जो है भेजना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हंसते रहिए, खेल खिलाते रहिए। दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ वंडरफुल डे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 23 साल बाद अमेरिकी सेना छोड़ेगी इराक। अमेरिकी सेना 30 सितंबर तक इराक छोड़ देगी। 23 साल पहले 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्यवाही के बाद से वो वहां मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें नहीं लगता कि अब हमें वहां सेना की जरूरत है। ट्रंप को लगा पड़ा झटका, ईरान युद्ध की वजह से डेमोक्रेट्स ने रोका $1.15 ट्रिलियन का रक्षा विधेयक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर अपने देश में घिरते जा रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने ईरान युद्ध के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए संसद के ऊपर सदन सीनेट में $1.15 ट्रिलियन के वार्षिक रक्षा नीति का बिल रोक दिया है। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस की स्वीकृति के बिना युद्ध छेड़ने और अमेरिकी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजने पर आपत्ति जताई। तुर्की का S-400 दाव, खाड़ी देशों को रूसी मिसाइल बेचकर अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में वापसी की ताक में अंकारा। तुर्की का रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम पिछले 7 सालों से नाटो और अमेरिका के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह रहा है। तुर्की ने इसे 2017 में खरीदा था और 2019 में इसकी डिलीवरी हुई थी। इस सौदे की वजह से तुर्की को अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया और उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि अब इस पूरे मामले में नया विवाद तब आया जब इस बात को लेकर अटकलें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं कि तुर्की अपने इस बिना इस्तेमाल हुए S-400 सिस्टम को किसी खाड़ी देश को बेचने की तैयारी में है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात और कतर का नाम खूब चर्चा में है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। मणिपुर में असम राइफल्स कैंप पर भीड़ का हमला, सुरक्षा बलों ने संभाली स्थिति। मणिपुर के सेनापति जिले में असम राइफल्स द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद उग्र भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कैंप पर पथराव किया और सुरक्षा बलों के 3 वाहनों को आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर और भीड़ को तितर बितर कर आधी रात तक स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सोनम वांगचुक के नाम शशि थरूर का खुला पत्र, जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों से की अपील। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बीते 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए एक पत्र लिखा है। शशि थरूर ने इस ओपन लेटर में सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने लिखा, इस विरोध प्रदर्शन ने पहले ही देश की अंतरात्मा को जगा दिया है और छात्रों के मुद्दे की लड़ाई अब संसद में लड़ी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस भूख हड़ताल से सोनम वांगचुक की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद शशि थरूर ने ये पत्र लिखा। पीएम मोदी ने गिनाए भारत ब्रिटेन FTA के लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इस विरोध प्रदर्शन ने पहले ही देश की अंतरात्मा को जगा दिया है और छात्रों के मुद्दे की लड़ाई अब संसद में लड़ी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस भूख हड़ताल से सोनम वांगचुक की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद शशि थरूर ने ये पत्र लिखा। पीएम मोदी ने गिनाए भारत ब्रिटेन FTA के लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार

से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और गहरे होंगे और दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेगी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कर पाया तो इतना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है।

0: Okay, the song finished. That was a short song, eh?
1: Yeah. That's strange.
0: Okay. All right. Okay, the song finished. All right. Okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Radio Bizwani, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान. नंबर है 0430031701. And याद रहे इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ और फिर उसके बाद 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम रहेगा और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे दिव्या के साथ. तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, ठीक है? ओके, व्हाट एल्स वी गॉट आफ्टर द नेक्स्ट सॉन्ग.
1: ओह ओके.
0: लेकिन
1: हां हां,
0: एनी अपडेट ऑन द स्कोर्स?
1: ए एनी
0: द स्कोर्स ऑन द सॉकर?
1: ओह नो, शुड बी. It should be over by now, isn't it? Because it...
0: Okay, okay.
1: It was half time when before our program even started, so it should be over. No?
0: Argentina 2, England 1.
1: Whoa, England.
0: Argentina came from behind to book a place in the World Cup final. Wow.
1: So England is out.
0: 3-2, France 0. So, okay, the third place playoff, second and first. All right. Okay, now Argentina 2, England. Okay.
1: So will England then play France on Sunday?
0: Book place in the World Cup final. So England scored what? Argentina 2?
1: Yeah, so. But it's
0: so play on the. They'll play the second, I mean, the...
1: Hang on. So then England will play France on Sunday, right?
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah, yeah.
1: And the finals will be on Monday.
0: Yeah, yeah. Okay, chalo, agla jo geet hai, ye geet hopefully aap sabhi ko acha lagega. Ye geet ka story main batata hoon, to aapko pata chal jayega kaun sa gaana hai, kyunki maine pehle bhi bataya story. ये गीत किसी और को गाना था, लेकिन इसको फिल इन करने के लिए कविता कृष्णमूर्ति से गवाया गया. देन दे सेड कि शी सेंग सो वेल एंड दे केप्ट द सॉन्ग, सो दे जस्ट केप्ट द सॉन्ग. ओके,
1: यप,
0: इन द मूवी संग बाय कविता कृष्णमूर्ति.
1: आई वाज गोना प्ले दिस सॉन्ग.

0: थैंक यू अजय भाई, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता,
1: जी
0: वुड यू बिलीव इफ आई टोल्ड यू दैट आई मेट कविता कृष्णमूर्ति?
1: Yes, I will because you told me before.
0: I met her. I met her. No, I met her when she accompanied Manade to Fiji in Ngātamuru High School, and I was the light man, you know. And
1: Yes.
0: then after that, Manade came to our house, and I still remember he had a scotch with warm water. But yeah, so. That's when I met her. That was when she was probably just starting off in her career, you know.
1: Up and coming, a rising star, you mean?
0: Yeah, yeah, yeah. Anyway, maybe I should write a book. I don't know. देखिए दोस्तों,
1: You
0: हम जब
1: should. Why
0: प्रोग्राम
1: not?
0: करते हैं तो कुछ या कुछ अच्छे-अच्छे बातें। Yeah, I met all these people. I met रफी साहब. But I did not meet Kishore Kumar ji, but I went to his concert twice when he came.
1: Yep.
0: But I didn't get a chance to say hello to
1: Meet
0: him or
1: him.
0: nothing like that. Okay, yeah. But yeah, all these people that used to come. अच्छा देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जो हर दिन किसी न किसी बात के लिए शुक्रिया कह सकता है। ग्रेटिट्यूड दिल को हल्का करता है और खुशी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप भी जानते होंगे दोस्तों, कभी अगर आप कुछ अच्छा काम किए हैं, आप देखें आप जो भी कुछ किए हैं उससे किसी के को मुस्कान आ जाता है चेहरे पर, तो ओह दिस अनदर सॉन्ग, चेहरे पर मुस्कान, तो आपको भी अच्छा लगता होगा ना। जरूर, ये हमारा एक फीलिंग है, ह्यूमन फीलिंग है, जब किसी को हम हेल्प करते हैं, चाहे कोई ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल हो, किसी को भी। तो हमेशा ये बात याद रखें दोस्तों, डोंट टेक दिस वेल्थ टू मच फॉर ग्रांटेड। इस दुनिया आपका नहीं है, ना मेरा है, किसी का नहीं है। खाली एक हमारा एक क्या बोलते हैं, स्टेपिंग स्टोन है। हम खाली कुछ दिनों के लिए ट्रांसिट में आए हैं, शायद मंजिल कहाँ नहीं मालूम
1: That's so true, eh?
0: लेकिन यार कौन जानता हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बस कर्म अच्छा रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, और अगर आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कर्म ठीक नहीं रखते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, किसी को मदद नहीं करते हैं, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा याद रखे, और हमेशा याद रखे, ब्लैक बॉक्स है आपके अंदर। आई यू नो हु टोल्ड मी दैट, इट्स नॉट आई हु सेइंग दिस। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त अभी दुनिया में नहीं है, बेचारा कभी ब्लैक बॉक्स खुला होगा। उन्होंने एक बार कहा था मुझसे कि यू नो जतीश, आई हैव बीन थिंकिंग, यू नो ऑल दिस प्लेन्स आर क्रैशिंग, दे हैव अ ब्लैक बॉक्स, यू नो वी हैव अ ब्लैक बॉक्स इनसाइड अस टू। हाँ, तो या तो चलो आगे बढ़ते हैं
1: सो व्हाट यू
0: दोस्तों।
1: सेइंग
0: और
1: इज व्हेन वी मीट आवर एंड आवर ब्लैक बॉक्स इज गोना बी अनलॉक्ड I think
0: Or if
1: so.
0: you make it there,
1: Eh?
0: yeah, it will be unlocked.
1: And
0: That will
1: then
0: tell you,
1: everything's
0: okay,
1: gonna
0: तो इधर
1: come
0: नीचे
1: out.
0: जाइए, हेल में या तो हेवन में जाइए।
1: Every single thing you did and every single thing you didn't do that you should have done will be there. You know that? I think.
0: कुछ भी करो, बट सोच लो पहले। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके ओके
1: Yeah. और
0: चलो कुछ भी करो, बट सोच लो पहले। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके
1: Yeah.
0: ओके
1: और
0: चलो ओके, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू

0: और इस समय वाह 20 मिनट हो गए हैं, 8 बजकर, दोस्तों टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, कार्यक्रम सुनना ना भूलेगा, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, और 3 बजे से निविया के साथ।
1: और
0: ओके
1: कल नीलम आएंगे ना?
0: नीलम, हाँ कल नीलम है, कल हम नहीं रहेंगे दोस्तों, ओ छुट्टी। But
1: Of
0: we'll miss our listeners. We'll miss our listeners. I
1: course we
0: really mean
1: will.
0: that.
1: No, I do.
0: Yeah, you can still say hello to us, okay? All right. अगला जो गीत है, मालूम नहीं मैं शमशेर भाई को याद कर लिया, और एक गाना याद आ गया मुझे, सुना देते हैं शमशेर भाई अगर आप सुन रहे हैं।

0: माय गुडनेस, ही रियली वांट्स हिज मनी बैक. प्यार
1: पैसा के मन से हो रही है बात. चलिए, एक इट्स नॉट सो ओल्ड, राइट? इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड सॉन्ग.
0: ओके,
1: बट इट्स संग बाय अ लेडी. इट्स लाइक अ इन अ डिफरेंट नॉस्टैल्जिक स्टाइल. ओके, चलो सुनते हैं. आई बिकम एन

0: जी हाँ दोस्तों, फिल्म तीसरी मंजिल से गीत को आपने सुना शमी कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज में, तुमने मुझे देखा। जी हाँ, ग्रू अप विद दिस सॉन्ग,
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग।
0: या नाइस सॉन्ग। ओके
1: ओके,
0: और बस शायद दो गाना।
1: ओह माय गॉड, हे सॉरी,
0: या
1: I'm having a problem, and similar to your problem. So from now on, you're going to be hearing me do that. Okay, I'm going to play a song. Yeah?
0: Yeah, go ahead.
1: Yeah. Are you playing?
0: May you play?
1: Okay, here we go.

0: और थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने साथ दिया। अब यहाँ से हमारा साथ टूटेगा तो लेकिन फिर जुड़ेगा मंडे मॉर्निंग को।
1: मंडे
0: और
1: मॉर्निंग
0: जी हाँ, अपना ख्याल रखेगा। एंड चलिए, एक आखिरी जो गाना है अरिजीत सिंह ने गाया है लेडी गागा के साथ, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों है, बड़ा प्यारा गीत है, शायद आपको भी अच्छा लगे। तो एमी बेटा, आई सी यू
1: Monday.
0: On Monday.
1: Yes,
0: Okay.
1: have a
0: So
1: beautiful
0: here we go.
1: weekend, everyone,
0: Yeah.
1: And take care.

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे जोन में जहां स्ट्रेस लेना सख्त बना है, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना सबसे खास मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाला शो इट हैपेंस। जी हाँ सताक्षी, इस शो में एक बार फिर से आपकी हमसफर, आपकी हमदर्द और हमराज बनकर हाजिर हो चुकी है। वैसे इट हैपेंस ये जो हमारा शो है, ये हर मॉर्निंग इतना खास क्यों हो जाता है? कभी कभी मैं ये सोचती हूँ और फिर समझ में आता है कि यार ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सुबह की शुरुआत हम और आप मिलकर जो साथ करते हैं। और यू नो सबसे स्पेशल चीज होती है कि सुबह सुबह कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई क्या मिजाज है, कैसा हाल है, कैसा तसव्वुर है और रात में सपने किस किस के आए। जी हाँ, कोई स्पेशल या फिर आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रात भर सपने देखे आपने, किसी की यादों में करवट लेकर रातें गुजरी हैं या फिर दीवारें और छत देख देख कर आंखें एकदम खुली रह गईं। वैसे फोन की स्क्रीन के साथ तो वक्त नहीं गुजराना। हाँ, तो कैसे गुजरी रात और कैसी है ये सुबह, शेयर कीजिए आपकी सताक्षी के साथ इट हैपेंस में आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। पर आज चलिए हम आगे चलते हैं और एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।
1: सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है।
0: आपकी सताक्षी के साथ इट हैपेंस में आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। पर आज चलिए हम आगे चलते हैं और एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।
1: सरहद पे

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी है आपके साथ एक बार फिर से कुछ बहुत ही प्यारे और मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ। वैसे इसके पहले कि आपके साथ गुफ्तगू आगे हो, हम आपको गाने सुनवाएं आज के फ्रेश मॉर्निंग की स्टार्ट करें, उन्हें विश कर दें भाई जिनका आज बहुत ही स्पेशल डे है। सो देखिए, दिन ना हर एक रोज की तरह आता है, और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ उनके लिए नहीं जिनका आज बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी या फिर कोई इंटरव्यू है, कोई रिजल्ट आना है, नहीं, हम सबके लिए ही आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हर दिन एक नया पेज जो होता है। बट यस, जिनका आज बर्थडे है, बर्थडे बेबीज, मेरे बर्थडे वाले दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका बर्थडे। और भाई, विश हमारी रेडियो प्रस्थानी की आपके लिए यही है कि जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे और जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए आपकी कोशिशें लगातार जारी रहें। जिनके आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, एक दूसरे का हाथ हर मुश्किल दौर में थामे रहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हम जब प्यार भरा समा होता है तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जहां जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं, बॉस, बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं, तो वो फेज आपकी जिंदगी में ना आए, एक दूसरे पर भरोसा एतबार हमेशा बना रहे। इसी विश के साथ विश करूंगी उन्हें भी जिनके लिए आज का दिन बहुत ही खास और स्पेशल है, कुछ होने वाला है या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और चलिए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ इंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: इट हैपेंस सुन रहे हैं आप आपकी सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 एम पर। वैसे ब्रिस्बेन के इस खूबसूरत और चमकते हुए आसमान के नीचे और हमारी प्यारी ब्रिस्बेन रिवर के लहरों की ताजगी के साथ उम्मीद है कि आपकी सुबह एकदम कड़क कॉफी या चाय के साथ शुरू हो चुकी होगी और आप अब आज के दिन की नई शुरुआत करने के लिए एकदम रेडी हो चुके होंगे। अच्छा सच सच बताइए, आज सुबह उठते ही किस किस ने रात को देखे हुए किसी अजीब से सपने का मतलब गूगल पर ढूंढा? भाई मेरे साथ ये बहुत होता है, इसीलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे जिक्र किया था कि भाई किस तरह के सपने आए रात में। हाँ मतलब कभी कुछ ऐसा दिख जाता है कि यार सोचती हूँ कि कहीं ये सपना सच हो गया तो इस सपने का क्या मतलब है, है ना। कभी कुछ ऐसा देख लेते हैं हम, कभी चोट लग गई हमें, हम गिर गए, या फिर कुछ बहुत खुशी का सपना देख लिया हमने, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा ध्यान जाता है कि यार कितना खूबसूरत या कितना खराब सपना था, अगर ये सच हो गया तो इसका क्या मतलब है, है ना। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह ये पागलपंती करते हैं कि गूगल पर जाकर उसका मतलब सर्च करते हैं। अच्छा या किस किस ने सुबह ये सोचकर आधा घंटा खराब कर दिया कि कल उसने मुझे इतना रूखा जवाब क्यों दिया था मैसेज पर। यू नो हम इंसान हैं और छोटी छोटी सी बात पर इतना उस बात को दिल से लगा लेते हैं या इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं उसका कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, और इसे ही कहते हैं क्या, ओवरथिंकिंग। तो भाई देखिए, बस आपसे इस बात पर इतना ही कहूंगी कि इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कुछ लाइफ में जो अजीब होता है और वो अजीब लोग या अजीब सिचुएशंस कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो उन पर ओवरथिंक करना, उन्हें ज्यादा सोचना बंद कीजिए। और चलिए आपको एक और ट्रैक के साथ आगे लेकर चलती हूँ, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस, जी हाँ, रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM सुन रहे हैं आप मेरे साथ।
1: इतनी

कल की फिक्र में आज का सुकून क्यों खोना, कल की फिक्र में आज का सुकून क्यों खोना, जो होना है वो तो होगा ही, फिर बेवजह क्यों रोना। जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर बेवजह क्यों रोना। एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और कहो, एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और कहो, एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और कहो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो बस खुश है होना। जी हाँ, हम हमेशा दिल पर पुरानी बातों का पर्दा लगा कर रखते हैं, या फिर फ्यूचर को सोच सोच कर अपने आज को खराब करते रहते हैं। तो देखिए, जो हो चुका वो तो हो चुका, और जो होना है वो तो कल होगा, और जब होगा तो देखा जाएगा। अभी दिमाग के सारे जालों को साफ करिए और ब्रिस्बेन की इस खूबसूरत धूप का मजा लीजिए मेरे साथ, और सुनते रहिए आज के कुछ कड़क से गाने। और ऐसा ये गाना ये रहा, हाजिर है आपके लिए, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

0: गानों की हैट्रिक आप एंजॉय करें सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक के इस अगले ट्रैक की ओर।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

सो वेलकम बैक, रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ हैं आप इट हैपेंस के एक और खूबसूरत और प्यारे साथ के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी रोज के हसल्स, जहाँ उस डेस्क की जहाँ हम बैठकर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। ब्रिस्बेन का हमारा जो ये कॉरपोरेट और वर्किंग कल्चर है ना, यहाँ हम अक्सर एक भूत के शिकार हो जाते हैं। कौन सा भूत? वो भूत है सबको खुश करने का भूत। बॉस को भी खुश रखना है, कलीग्स को भी इम्प्रेस करना है, और सारे डेडलाइंस कल की बजाय आज ही खत्म करने हैं। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि आप कोई रोबोट नहीं है। अगर किसी टास्क में थोड़ा सा डिले हो गया या आज आपका काम 100% नहीं हुआ या सपोज मन ही नहीं लगा 100% काम में, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज इट हैपेंस। आज लंच ब्रेक में अपनी डेस्क से उठिए, थोड़ा बाहर जाकर ताजी हवा खाइए, काम कल भी हो जाएगा शायद, है ना, क्योंकि रोज तो आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन आपकी सेहत और आपका मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी मेंटल पीस के नाम फिलहाल एंजॉय करिए ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। आप सुन रहे हैं कुछ सुबह के बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स।

आज की मॉर्निंग को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस में आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सो भाई, इससे पहले को कुछ और कहूं, एक बढ़िया सा शेर याद आया है जो सिर्फ आपके लिए है। तो अर्ज किया है, कामयाबी की दौड़ में खुद को इतना मत थका देना, कामयाबी की दौड़ में खुद को इतना मत थका देना कि जब मंजिल मिले तो जश्न मनाने की ताकत ना बचे, कि जब मंजिल मिले तो जश्न मनाने की ताकत ही ना बचे। जी हाँ, कामयाबी की दौड़ में शामिल होइए, लेकिन इतना मत थक जाइए कि यार सेलिब्रेशन के समय लगे कि यार अब तो सारी जिंदगी निकल गई है ना। और इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी को सेलिब्रेट करते रहिए, इसे जीते रहिए और लाइफ को इंजॉय करते रहिए। तो चलिए, आपके लाइफ के इंजॉयमेंट के नाम ये अगला ट्रैक भी आपके लिए प्ले किया जाएगा। इसे इंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।